0: जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
0: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और हैप्पी रक्षाबंधन। जी हाँ, रक्षाबंधन का ये त्योहार एक बार फिर से आ गया है, भाई और बहनों का प्यार लेकर। तो आज बहनें बहुत जल्दी में, उन्हें बहुत सारे काम है, मेहंदी भी लगवा ली है और सज धज कर एकदम रेडी हो गई हैं, क्योंकि आज उन्हें अपने भाई की कलाई पर सजा देनी है राखी। लेकिन इन भाइयों का क्या करें, मतलब हमेशा से नालायक हैं। देखिए अभी भी सो रहे हैं, तो खड़ी खड़ी देख क्या रही हैं और सोच क्या रही हैं। भाई आपका दिन है, आपका हक है, जाइए और कान खींच के उठा दीजिए और देखिए कुछ कहें तो बता दीजिएगा उन्हें कि ये परमिशन सताक्षी ने दी है। भाई आपका हक है आज उन्हें उठाने का, तो जाइए और उनसे कहिए कि आपको ज्यादा परेशान ना करें और फटाफट से उठ के राखी बंधवा लें। दोस्तों मैं हूं सताक्षी, आपके साथ रेचु प्रसानी 1701 AM पर। और देखिए ये हंसी मजाक, ये मस्ती, ये खींचतान तो यूं ही चलेगी आज, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और भाई बहन की नोकझोंक तो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तो बस हम भी रेडी हैं आज के इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के इट हैपेंस की इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी, सदाक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए रक्षाबंधन स्पेशल इट हैपेंस।

सो आज हम और आप मिलकर रक्षाबंधन का पावन पर्व रेडियो प्रस्वानी पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सफर है ये इट हैपेंस का, सताक्षी है आपके साथ। सताक्षी एक बार फिर से कहेगी उन सबको जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और आज की सुबह बहुत हसीन है क्योंकि आज है रक्षाबंधन का पावन पर्व। तो सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से ढेर सारी आज के दिन की शुभकामनाएं। और भाई आज का दिन उनके लिए तो और भी खास है जिनका आज हैप्पी बर्थडे यानी रक्षाबंधन और जन्मदिन एक साथ। और जो पेरेंट्स हैं उनका जरा खर्चा कम होगा क्योंकि किचन में तो बहुत सारे पकवान बनने ही वाले हैं आज, तो अलग से कुछ इंतजाम नहीं करने पड़ेंगे। फिलहाल रेडियो प्रसारणी विश करता है आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपकी जिंदगी जो है वो खुशियों से भरी रहे, आबाद रहे और आप अपनी हर जायज ख्वाहिश को मुकम्मल बना पाए। जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, यार मैं क्या कहूं, मतलब शादी की सालगिरह रक्षाबंधन के दिन। लेकिन कोई बात नहीं भाई, बहन घर आएगी, राखी बांधेगी और आपको गिफ्ट तो वो आज नहीं देगी, क्योंकि गिफ्ट तो उसको आपको देना है ना। तो राखी बंधवाकर आज रिटर्न गिफ्ट पहले ही दे दीजिएगा उसको, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आज आपका जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी जो है, जो शादी की सालगिरह है, वो रक्षाबंधन के दिन पड़ी है, भाई जब सारी फैमिली एक साथ इकट्ठी हो जाए तो हर दिन त्योहार हो जाता है और त्योहार के दिन अगर कुछ खास पड़ जाए तो वो त्योहार जो है वो और भी स्पेशल हो जाता है ना। कुल मिला के मैटर ये करता है कि कोई भी पल खुशियों का हमें स्किप नहीं करना है, सारी चीजें जो है वो बटोर लेनी है। मेरा तो कहने का मतलब हमेशा यही होता है कि यार छीन लो एकदम, मतलब ना, क्योंकि खुशी के पल जिंदगी में बहुत कम आते हैं और आज ऐसा ही एक खुशी का पल है। आज रक्षाबंधन भी है, आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो शादी की सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और एक दूसरे के साथ यूं ही हाथ में हाथ डालकर मजबूती के साथ खड़े रहिएगा, भले ही कितने भी तूफान आए, कितनी भी परेशानियां जिंदगी में आए। जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल है, खास है, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। अगर आप आज कुछ अचीव करने वाले हैं, कुछ हासिल करने वाले हैं, कोई सपना है आज के दिन के लिए आपका, फिलहाल अभी आप सबके लिए ट्रैक एंजॉय कीजिए, इसे बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: Oh, heer ki khatir mar gaya raja, chhod ke takht hazara.
3: So what?
2: Aur heer ta phir di shopping kar di.
3: Big deal, dude.
2: Heer ta phir di shopping kar di. दिन भर सेक्टर 17 भाई, दिन भर सेक्टर 17.
3: ओ मैन,
4: मैनू नी चाहिदा कोई राजा.
3: चल झूठी
4: नारा छे दी यारी वीरे, मैनू ते चढ़िया चा फैशन दा.
3: हाय चुकला रब्बा मैनू.

साड़ी का टुकड़ा मैंने बांधा था, ऐसे मोल चुकाओगे ये ना जाना था। जो मैं कहूँ भैया तुमको आना है, 1000 में मेरा कान्हा है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ये क्यों कहा और कहां से मैंने कान्हा जी को इन्वॉल्व कर लिया, तो भाई ये एक बहुत ही प्यारी और सच्ची कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए, और ये मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, लेकिन इस अगले ट्रैक के साथ। आइए फिलहाल आपको आगे लेकर चलती हूँ। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस, और आज इट हैपेंस में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन।

रक्षाबंधन स्पेशल आप सुन रहे हैं इस वक्त मेरे साथ इट हैपन्स, और मैंने बहुत ही प्यारी सी कुछ लाइंस कही थी ना इस ट्रैक के पहले. सो ये क्यों कहा था मैंने, यू नो, कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई. तो देखिए, रक्षाबंधन भारत का त्योहार है, आप जानते हैं, और सावन की पूर्णमासी के दिन इसको मनाया जाता है. और रक्षाबंधन ये जो त्योहार है, भाई और बहन के इस प्यारे से त्योहार की शुरुआत हुई थी महाभारत काल से, जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की कटी उंगली पर अपनी साड़ी का पल्लू बांध दिया था. भगवान की उंगली इंजर्ड थी, उनको जख्म था और उसमें से खून बह रहा था. द्रौपदी ने उसको देखा और तुरंत उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया. भगवान श्री कृष्ण के लिए वो मोमेंट बहुत स्पेशल था, बहुत इमोशनल हुए वो, और उन्होंने एक बात कही थी कि मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमको वचन देता हूं कि जो साड़ी का पल्लू तुमने मेरी उंगली पर बांधा है उसके हर एक धागे का मैं मोल चुकाऊंगा. और वो मोल कैसे चुकाया उन्होंने, वो तो जगत प्रसिद्ध है. जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने उसकी लाज बचाई थी, है ना. तो ऐसे भाई और बहन के पावन और प्यारे त्योहार के नाम, चलिए सुनते हैं ये अगला ट्रैक. हमारे साथ सुनते रहिए इट हैपन्स, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 107.01 FM.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

वेलकम बैक सताक्षी के साथ हैं आप इट हैपेंस के सफर में। गुड मॉर्निंग वाला ये शो है हमारा। प्यारी प्यारी सी मॉर्निंग जो है वो हो गई है और ये मॉर्निंग और भी खास है क्योंकि ये मॉर्निंग है रक्षाबंधन की मॉर्निंग, यानी भाई और बहन के रिश्ते की मॉर्निंग, यानी कि वो मॉर्निंग जब आपकी कलाई पर बनने वाली है प्यारी प्यारी सी रंग बिरंगी राखियां। वैसे एक और भी बहुत मजेदार बात होती है रक्षाबंधन में, भाई जिनके एक भाई है उनका तो ठीक है कि भाई उसको बहन को एक ही भाई को राखी बांधनी, लेकिन जहां पर दो तीन चार भाई हैं, बड़ी फैमिलीज भी होती हैं यार, ज्वाइंट फैमिलीज जिसे हम कहते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि पहले किसे राखी बंधेगी इस बात को लेकर झगड़ा होता है, और बहनें जहां पर ज्यादा हैं वहां पर इस बात को लेकर लड़ाई होती है कि पहले कौन राखी बांधेगा, है ना, और ज्यादा अच्छा गिफ्ट किसको मिला है, ये तो मतलब जंग का मैदान बन जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि ये जो जंग का मैदान वाली स्थिति है इससे बचने के लिए एक ही से गिफ्ट दीजिए ना सारी बहनों को, तो लड़ाई झगड़े की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। और यार जो सबसे बड़ा भाई है वो पहले राखी बंधवा ले, उसके बाद उसके बाद वाला, उसके बाद उसके बाद वाला, तो ये जो झगड़े की वजह है इतने खूबसूरत त्योहार में वो जरा कम हो जाएगी, है ना। ऐसी अच्छी अच्छी बातें आपको बताती रहूंगी रक्षाबंधन के बारे में भी, भाई बहन के रिश्ते के बारे में भी, और अच्छे अच्छे से गाने भी तुम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं भाई, त्योहार का मजा और ऊपर से गानों का तड़का, आहा क्या बात है। तो चलिए इस अगले ट्रैक को एंजॉय कीजिए सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 पर। इस ट्रैक के बाद फिर से मिलती हूँ आपसे।

इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM पर। बचपन से बुढ़ापा आ जाए लेकिन भाई और बहन के लिए रक्षाबंधन का जो एक्साइटमेंट है वो वही का वही रहता है। दोनों बचपन में भी लड़ते हैं और बड़े होकर भी लड़ते हैं। वैसे इस लड़ाई का मजा तब ज्यादा आता है जब बहन छोटी हो, या छोटी बहन को परेशान करने का तो हक है ना भाई का, और वो उसे चिढ़ाता भी है, उसे डांटता भी है। लेकिन सच बताऊं तो सबसे ज्यादा बड़ा भाई अपनी बहन को प्रोटेक्ट भी करता है। मजाल है कि कोई कुछ बोल दे उसको, लेकिन हाँ वो इतना तंग करता है कि कई बार बहन रोने लगती है। और राखी का त्योहार, मैंने कहा ना कि कितना इरिटेट करते हैं भाई बहन एक दूसरे को। कभी राखी बंधवाने के लिए लड़ते हैं, तो कभी सबसे अच्छी राखी बंधवाने के लिए लड़ते हैं, और कभी कौन सी मिठाई उन्हें पसंद थी जो नहीं आई इस बात पर लड़ते हैं। भाई और बहन को तो लड़ने का बहाना चाहिए, और आज के दिन वो बहाना और भी कई बहानों में तब्दील हो जाता है। बहुत सारे रीजंस मिलते हैं लड़ने के लिए। तो चलिए इन भाई बहन को इनके हाल पर छोड़ते हैं और एक अगले ट्रैक के साथ आगे चलते हैं। आपने सताक्षी के साथ और सुन रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस।

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश चालक दिनाल से बने हुए। देखो शराब दी लत हुंदी है ना जेड़ी वो ना सिर्फ सेहत दे लई बहुत ज्यादा हानिकारक हुंदी है बल्कि शरीरिक मानसिक अते समाजिक जीवन नूं भी हौली हौली ना बर्बाद ही कर दिंदी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच वी अजिहा होया है। बिल्कुल सही सुनिया तुसी, बॉलीवुड इंडस्ट्री विच अजिहे कई सितारे हैगे ने जिन्हां नूं शराब दी लत लग गई सी। इस बुरी आदत ने कई सारे एक्टर्स दा करियर हैगा ना जिहड़ा तबाह कर दिता सी ते कई कलाकारां दी जिंदगी नूं मुश्किल बना दिता सी। कुछ सितारियां ने इस लत तों बाहर निकल के अपनी जिंदगी सवारी ते कुछ इस दे शिकार बन के रह गए। तो अज मैं तुहानूं बॉलीवुड दे कुछ उन्हां स्टार्स बारे दसूंगी जिन्हां दी शराब दी लत ने उन्हां दे करियर अते जीवन ते बहुत ही ज्यादा डूंगा असर पाया सी। केड़े केड़े ने इस लिस्ट विच करदे उन्हां बारे गल, पर पहला सुनो एक गीत।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हां जी, तक पर फिर तो बहुत बहुत बहुत बहुत बड़ा स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते 46 संदेश शलक दिनाल से बने हुए। अगला जेड़ा नाम है गया ना, उसनों सुन के तुसी हैरान जरूर हो जाओगे, क्योंकि वो पट खानदान दे नाल जुड़े हुए है। आलिया भट्ट बिल्कुल भी नहीं है नाम, इस बारे सोचियो ना, ते ना है शाहीन भट्ट, राम है जी पूजा भट्ट। जी हाँ, पूजा भट्ट का नाम इस लिस्ट विच शामिल है तो सब हैरान हो गए होंगे, पर यह सच है। पूजा भट्ट नूं शराब की लत लग गई थी। पूजा भट्ट ने खुद खुल के दस्या है कि एक समय उन्हां दी जिंदगी शराब की लत की वजह नाल बुरी तरह के नाल प्रभावित भी हुई सी, जिस तों निकलण दे विच उन्हां नूं काफी टाइम लग गया सी।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: Tal Event Shan ke saath pesh karta hai Grand Bhajan Night. सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी. फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट में. $20 टिकट में है भोजन भी शामिल. नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे. मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट. ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट. समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन. भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम. ग्रैंड भजन नाइट. कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926. ग्रैंड भजन नाइट के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट. सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी. फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट में. $20 टिकट में है भोजन भी शामिल. नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे. मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट. ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट. समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन. भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम. ग्रैंड भजन नाइट. कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926. ग्रैंड भजन नाइट.

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal janglaan vich agg lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di agg to bachav di yojana banao, ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. Apne parivar layi lodindiyan sari zaruri cheezan naal ghar chhad ke jaan wali kit banao. Agg de khatre de darjiyan di jaanch karo ate jangal di agg diyan chetavniyan nu suno. ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ
2: ਬੜਤੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਕੇ ਸਾਥ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਕੁਛ ਫਿਊਲ ਵਾਊਚਰਸ ਔਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਊਚਰਸ ਜਿਸਸੇ ਖਰਚੋ ਮੇ ਥੋੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਡਿਜੀਸੈਲ ਆਪਕੋ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਟੂ ਵਿਨ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਿਊਲ ਵਾਊਚਰਸ ਔਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਊਚਰਸ ਵਰਥ $100 ਐਵਰੀ ਵੀਕ Just send $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
3: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. Ye saral hai, nishulk hai aur ye lakshanon ke samne aane se pehle hi lung cancer ka pata laga sakta hai. Yadi aapki dhoomrapan karne ki history rahi hai, तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

हां जी, तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े पे चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 एम ते जी अर्चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। इस लिस्ट विच एक बहुत ही दिग्गज नाम भी है जो साडे विचकार नहीं है के पर नाम उन्हां दा है। नाम है जी धर्मेंद्र। हिंदी सिनेमा दे दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने खुद स्वीकार किया है कि पीन दी लत दे कारण उन्हां दे करियर दे विच गिरावट जरूर आई है। फिर फरदीन खान दा नाम भी इस विच शामिल है। ड्रग्स अते शराब दी लत दे कारण फरदीन खान नूं रीहैब जाना पै गया सी जिस नाल उन्हां दे करियर नूं झटका लग्गिया। प्रतीक बब्बर नाल भी अजिहा ही होया। राज बब्बर अते समिता पाटिल दे बेटे प्रतीक बब्बर दा करियर भी नशे दी लत करके ही प्रभावित होया हैगा। तां इह सारे नाम हैगे ने जो मेरे अकॉर्डिंग इस लिस्ट विच शामिल ने।

0: मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे, इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
5: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
6: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
5: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
6: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
5: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
6: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
7: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
8: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
9: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
10: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVD, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
11: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाच के मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430228009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: लगता रूम में रह गए.

इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।

सर तुम्हें चाहता हूँ।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप,

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। जी हाँ, रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी भाई बहनों को। भाई बहनों का यह त्योहार हर भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाए और सेफ बनाए। जी हाँ, सो या इसी के साथ रक्षाबंधन आ गई है। और मैं इतना ही कहूंगी कि अपने भाइयों को लूटने का वक्त आ गया है। अगर आपने नहीं लूटा है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? लूट लो, जल्दी लूट लो, क्योंकि आज नहीं तो अगले रक्षाबंधन तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा। और आपको तो पता ही है, भाइयों से कुछ निकलवाने के लिए काफी एफर्ट्स लगते हैं। रक्षाबंधन जो है वो खुद ही आ जाता है एफर्टलेसली, जो कि आपको उनसे कुछ निकलवाने में हेल्प कर देता है। सो अच्छा सा गिफ्ट लीजिए, और अगर गिफ्ट नहीं देते हैं तो थोड़ा सा कैश मार लीजिए, और क्या। जी हाँ, इसके साथ रक्षाबंधन का ये त्योहार आप सबको बहुत बहुत खुशियां दे, यही मैं कामना करती हूँ, दुआ करती हूँ। और इसी के साथ अब जरा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है सबसे पहले क्या होता है। वेल, एक हेल्दी रिचुअल हम प्रैक्टिस करते हैं और वो है लंबी गहरी सांसों वाला रिचुअल, यानी कि डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ऐसे ही अच्छा फील करते करते शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया से गाने के साथ, और ये है एक पल का जीना अब तो है जाना। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी दोस्तों, एक चीज तो पक्की है कि रक्षाबंधन की यादें जो हैं वो हमेशा बहुत ही खूबसूरत रहती है। फिर चाहे हम अपनी जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर पहुंच जाए, जो भाई बहन का जो रिश्ता है ना, वो इतना बढ़िया रिश्ता है। और विनय से बढ़िया मतलब बहुत डिफरेंट तरीकों से बढ़िया। मतलब ऑफकोर्स आप सबसे ज्यादा लड़ाई अपने भाई बहनों से करते हो। जी हाँ, आप सबसे ज्यादा चीजें अपनी शेयर अपने भाई बहनों के साथ करते हो। आप सबसे ज्यादा चीजें अपनी छुपाते भी अपने भाई बहनों से हो। लाइक इफ यू वांट टू ईट समथिंग, आपको डर लगता है कि मैं जल्दी से खा लेता हूँ, नहीं तो मेरा भाई या मेरी बहन जो है वो आके खा लेगा। जी हाँ, या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो है हम अपने भाई बहनों से करते हैं। कोई भी अच्छी चीज हमें मिलती है हम छुपा देते हैं ताकि हमारा भाई बहन जो है वो ना देख ले। ऑफकोर्स कुछ केसेस में डिफरेंस भी है। जी हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो भाई बहन है वो एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा प्यार से रहते हैं कि मतलब लिटरली वो अपनी एक एक चीज जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे आज भी याद है कि जब भी मुझे कोई भी कुछ देता था जब मैं छोटी थी, तो मैं अपने भाई के लिए लेकर आती थी उसके लिए। जी हाँ, मैं कोई भी खाने की चीज मुझे मिलती थी मैं उसे नहीं खाती थी, मैं अपने भाई के लिए उसको लेकर आती थी। लेकिन उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ऐसी बात नहीं है यार, खाने की चीज खा लेनी चाहिए, भाई का इंतजाम बाद में हो जाएगा। जी हाँ, सो या डिफरेंट डिफरेंट जिंदगी के पड़ाव और डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप। अच्छा, जब आप छोटे होते हो तो आप एक दूसरे के साथ ही रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ओह कब इस इंसान से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अब आप जब बड़े हो जाते हो, जब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर रहना शुरू कर देते हो, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज जो है वो बन जाती है, है ना, मतलब आप अपनी जिंदगी में आगे जो है वो बढ़ जाते हो, आपकी प्रायोरिटीज जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, फैमिलीज आगे आप बना लेते हो अपनी अपनी, तब फिर वो जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको अपने भाई बहन के लिए एक चीज जरूर फील होती है, और वो ये है कि हम बेशक कितना भी लड़े अपने भाई बहन से, कोई और ना लड़े। हम अपने भाई बहन को कितनी भी गालियां दे सकते हैं, कितनी भी आजू बाजू की बातें कह सकते हैं, पर कोई और ना कहे। एंड दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग्स। एंड सिर्फ सिबलिंग्स नहीं, इनफैक्ट कजन्स के साथ भी हमारा रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा होता है। हम उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं, हम उनके साथ इतनी सारी चीजें करते हैं, और वो जो खूबसूरत जो मेमोरीज होती है ना, आई थिंक वो ओल्ड एज तक हमें याद रहती हैं। जी हाँ, आज भी हमारे जो दादा जी हैं या नाना जी हैं या फिर दादी नानी, ये वाली जो जनरेशन है ना, ये अपने बचपन की यादें जो है वो बताते हैं, अपने भाई बहनों के साथ की यादें। सो या अपने भाई बहनों के साथ आप कितनी भी लड़ाई कर लो, कितनी भी नोकझोंक हो जाए, वो जो प्यारी सी मेमोरीज है ना, वो हमेशा आपको याद रहेंगे, चाहे फिर आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी ओल्डी और गोल्डी हो जाओ। जी, ऐसे के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

स्टडीज ने प्रूव किया है कि आपके भाई या बहन, मतलब जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, वही इस दुनिया में वो इंसान है जो आपको पूरी जिंदगी जानते हैं, मतलब जो आपके साथ पूरी जिंदगी रहते हैं। जी हाँ, क्योंकि माँ बाप जो है वो एक वक्त के बाद साथ छोड़ देते हैं। जी हाँ, हमारा पार्टनर जो है वो एक वक्त बाद हमारी जिंदगी में आता है, लेकिन हमारे सिबलिंग्स जो होते हैं वो बचपन से हमारे साथ होते हैं और एंड तक वो हमें जानते हैं, एंड तक वो हमारे साथ रहते हैं। और स्टडीज ने प्रूव कर दिया है कि हमारे सिबलिंग्स से ज्यादा हमें कोई नहीं जानता, नॉट आवर पेरेंट्स, नॉट आवर पार्टनर, एंड आई थिंक दैट्स ट्रू। मतलब उनको आज भी याद होगा कि हमने वो जो कैंडी छुपाई थी वो कौन से गली गलियारे में छुपाई थी जी। मतलब आई थिंक दैट इज द केस। और साइंटिस्ट का ये कहना कि हमारे सिबलिंग्स जो हैं वो हमें सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई भी दोराय नहीं है। और क्या आपने भी कभी ऐसा देखा है, और क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके सिबलिंग जो है वो आपको किसी चीज के लिए ब्लैकमेल करते थे? जी हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता देखा है, क्योंकि हमारे सिबलिंग्स के पास हमारे सारे राज जो होते हैं, और इसी वजह से अगर उन्हें हमसे कुछ काम करवाना होता है तो वो हमेशा हमें ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि हम किसी का भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब भी हमारे भाई बहन हमें काम देते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे किसी ने हमारे ऊपर पहाड़ रख दिया। जी हाँ, लेकिन सबसे फनी चीज ये है जो मैंने देखा हुआ है, जो आजकल के बच्चों में भी देखा है, एंड आई थिंक पहले के बच्चों में भी थी, ऑल्दो उससे पहले के काफी पहले के बच्चों में थी या नहीं थी वो तो यू नो हमारे मॉम एंड डैडी हमें बता सकते हैं, लेकिन एक चीज जो है पक्की है, जो कि मेरे भाई और मेरे सिबलिंग के बीच में जो होता है वो ये कि जब भी वो मुझे पानी लाने के लिए बोलता है, बॉटल भरने के लिए, तो मैं से यही बोलती हूँ कि ठीक है, याद रखना मैंने तुम्हारे लिए ही काम किया था, अब तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। जी हाँ, सो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जरूर मुझे बताइएगा। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ, YouTube को टक्कर देने के लिए एक नई चीज मार्केट में आ गई है।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। तो दोस्तों, इसी के साथ यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज चेंज कर दी है, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। लेकिन यहां पर यूट्यूब को टक्कर देने के लिए और उस चीज का फायदा उठाने के लिए एक ऐप आ गई है। एंड गेस कीजिए, वो ऐप कहां से आई होगी? वेल ऑफ कोर्स वो ऐप आई है चाइना की तरफ से। मतलब किसी भी गैप को इस्तेमाल करके उसमें कैसे घुसना है, ये कोई चाइना से सीखे। जी हाँ, सो यहां पर अपेरेंटली उनकी एक ऐप आ गई है जो कि पहले से ही उनकी कंट्री में चल रही है। उसका नाम है बिलीबिली, जो कि लिटरली यूट्यूब की तरह ही है। उसमें वीडियो स्ट्रीमिंग होती है और बहुत कुछ होता है, वैसी ही ऐप है। इससे पहले ये चाइना में ही चलती थी, लेकिन अब उन्होंने इसे अपनी इंटरनेशनल जो है व्यूअर्स के लिए जो है वो खोल दिया है। और यूट्यूब के साथ आप इसमें भी मोनेटाइज कर सकते हो। अपेरेंटली इसके लिए आपको 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए या फिर 1,00,000 यानी कि 100,000 से ज्यादा व्यूज चाहिए और फिर मोनेटाइजेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। अब आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, चाइना वाले बहुत गड़बड़ करते हैं और हमारा डाटा जो है और हमारी प्रिवेसी को ब्रीच करते हैं, तो ऐसे में हम लोग जो है वो उनसे दूरी ठीक है। वेल ऑफ कोर्स ये बात तो आपकी सही है और इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, लेकिन चाइना का इस बारे में कहना है बिलीबिली के लिए कि हमने अब अपनी जो है इस टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है वो थोड़ा लाइटली ले लिया है और लाइटली जो है वो कर दिया है बाकी सब के लिए। अब उनको अपना पासपोर्ट की डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बहुत सारी जो है अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे इजीली चला सकते हो। वेल, एंड्रॉयड के लिए ये आ गया है और iOS के लिए ये जल्द ही आ रहा है। ये अगस्त 2026 से शुरू हुआ है, तो आप गेस कर सकते हैं कि ये तो गड़बड़ कर सकता है, खतरनाक वाली। क्योंकि आप खुद ही देखिए टिकटॉक की मार्केट कितनी बड़ी है, राइट? टिकटॉक की मार्केट कितनी बड़ी है, मतलब टीमू की मार्केट कितनी बड़ी है। चाइना की तरफ से कुछ भी आता है वो एकदम वायरल सा क्यों हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। वेल ऑफ कोर्स क्योंकि वो इजी फायदा देते हैं, सस्ती चीजें देते हैं। बट क्या चाइना एक अच्छी कंट्री है? वेल, चाइना लाइक्स टू प्रे ऑन योर प्राइवेट एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और किसी भी कंट्री के लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डाटा जो है वो हमेशा से बनाने की कोशिश करते रहे हैं। सो ऐसे में ये चीजें हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहती थी कि YouTube की तरह ही एक और ऐप जो है वो आ गई है जिससे मोनेटाइजेशन जो है वो किया जा सकेगा, और उसका नाम है बिलीबिली। आप लोग बोलोगे बिलीबिली ये बिलियों से इंस्पायर होके आई है क्या? आई डोंट नो जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर मेरे सामने एक मीम्स की स्प्रे आती है। मतलब सिर्फ एक मीम नहीं बल्कि दो तीन मीम आते हैं और वो दोनों ही बहुत ही जबरदस्त होते हैं। सबसे पहला, नोबडी कैन यूज यू इफ यू आर यूजलेस। जी हाँ, मतलब यूजलेस बन जाओ अगर आप चाहते हो कोई आपको यूज ना करे। और या तो फिर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में से देख लो कि किसी ने अगर आपको यूज किया है मतलब आप यूजफुल थे, आप यूजलेस नहीं थे। यूजलेस लोगों को कोई क्या ही यूज करेगा। अगर आपने किसी को या फिर आपको किसी ने यूज किया है तो आप यूजफुल तो थे। जी हाँ, तो वैसे ही जो है एक और चीज हुई आगे, और वो क्या थी, गेस करेंगे? जी हाँ, इफ योर एनिमी कैन प्रिडिक्ट योर नेक्स्ट मूव, डोंट मूव एट ऑल। जी हाँ, अगर आपका एनिमी आपके नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट कर सकता है तो मूव करिए ही मत। अरे उसको गलत प्रूव कर दीजिए। इफ योर एनिमी कैन प्रिडिक्ट योर नेक्स्ट मूव, देन डोंट मूव एट ऑल। एंड आई एम डैम श्योर कि ये जो मीम्स बनाए हैं ना, इसे बनाने के पीछे कोई जेंजी बंदा ही था। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख लो, मतलब ये कितने अलूफियत वाले मीम्स हैं, राइट? मतलब कि अगर आपको कोई यूज कर रहा है तो फिर यूजलेस बन जाओ ना, मतलब कोई यूज करेगा ही नहीं। और अगर कोई आपको प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है देन कुछ करो ही मत, डोंट मूव। इफ समवन कैन प्रिडिक्ट योर मूव देन डोंट मूव एट ऑल। आई थिंक इट मेक्स सेंस, इट्स अ वेरी फेयर पॉइंट, राइट? जी हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आजकल म्यूजियम से ज्यादा क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलती है सोशल मीडिया पर। इट्स नॉट म्यूजियम, इट्स सोशल मीडिया, दैट्स द न्यू क्रिएटिविटी हब। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ।
1: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ, ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ।
2: ਅਨੁਜ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਾ ਲਾਇਰ ਸਜੈਸਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਐਸਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਢੰਗ ਸੇ ਸੁਨੇ, ਸਮਝੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਮੁਝੇ ਸਮਝਾਏ।
3: ਅਰਸ਼ਾਦ ਲਾਇਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਲੀਜ਼ ਕਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਯਾ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਕੀ ਬਾਇੰਗ ਸੇਲਿੰਗ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਡਿਵੋਰਸ ਜੈਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰਸ ਵੀ, ਵੋ ਸਭ ਮੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਰਹੇਂਗੇ। ਅਭੀ ਫੋਨ ਕਰੋ 0420-933-171 ਪਰ ਔਰ 15 ਮਿਨਟ ਕਾ ਫ੍ਰੀ ਫੋਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੋ।
2: ਅਰੇ ਵਾਹ, ਇਨਕਾ ਪਤਾ ਬਤਾਨਾ।
3: ਅਰਸ਼ਾਦ ਲਾਇਰਸ, ਮਾਊਂਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟ ਸ਼ੋ ਗਰਾਉਂਡਸ, ਆਫਿਸ 5-1644 ਲੋਗਨ ਰੋਡ, ਮਾਊਂਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟ, ਐਂਪਲ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਕਾਲ ਅਰਸ਼ਾਦ ਫ੍ਰੋਮ ਅਰਸ਼ਾਦ ਲਾਇਰਸ ਨਾਉ ਔਨ 0420-933-171। ਵੈਬਸਾਈਟ www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: जो दोस्तों, इस दुनिया में लोगों को बहुत सारी अजीबो गरीब चीजें मिलती हैं। मतलब आप अगर कहो कि किस्मत बलवान तो सब भगवान मेहरबान। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि नीवा शर्मा, इस कहावत में कुछ चेंजेस लग रहे हैं। वेल, सबसे पहले तो आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो, चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे नीवा के साथ। सो एक प्लम्बर जो कि ऑस्ट्रिया में काम करता था, उसकी किस्मत खुल गई जब उसे सोना मिला। जी हाँ, 23 करोड़ रुपीज। मतलब अगर हम डॉलर्स में बात करें तो कुछ $3 मिलियन का जो है वो उसे सोना मिलता है दबा हुआ। आप लोग बोलोगे कि कहाँ मिलता है, किसको मिलता है ये सोना, मतलब हम लोगों को क्यों नहीं मिलता ऐसा सोना वोना कहीं भी। जी हाँ, सो ये जो है वो जबरदस्ती चीज तब हुई जब एक प्लम्बर जो है वो खोद रहा था किसी चीज के लिए, जब वो कंक्रीट को खोद रहा था वो प्लम्बिंग करने के लिए, और वहां पर वो पता चलता है कि ये जो रेनोवेशन का काम करने के लिए सारी चीजें हो रही है, उसको डिग करते वक्त मतलब उसको खोद खोद के एक चीज उसे मिलती है, और जब वो ध्यान से देखता है तो वो तो सोना होता है। जी हाँ, so while renovating an old villa in Vienna, Austria, a plumber noticed a mysterious rope sticking out of the basement floor. जी हाँ, and वो बहुत ज्यादा curious हो गया, so उसने और ज्यादा जो है वो उसे नीचे खोदना शुरू कर दिया और concrete के नीचे जो है इसे खोदना शुरू कर दिया। फिर उसने undercover किया एक hidden chest जिसमें literally 30 kg of gold coins जो है वो रखी हुई थी। मतलब 30 kg, मतलब 30 kg gold, 30 किलो गोल्ड। ओह, आई डोंट नो, ये तो मुझे लगता है पुरानी वाली बात हो गई, अगर अभी का रेट देखेंगे तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ, सो अंडर ऑस्ट्रियन लॉ द ट्रेजर कैन बी शेयर बिटवीन द फाइंडर एंड द प्रॉपर्टी ओनर, टर्निंग एन ऑर्डिनरी रिनोवेशन इनटू अ लाइफ चेंजिंग डिस्कवरी। सो अगेन, जो कि ऑस्ट्रिया के जो लॉज हैं उसके हिसाब से जो है, जिसने सोने को खोजा है उसको आधा हिस्सा मिल सकता है, और जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको भी आधा हिस्सा मिल सकता है। मतलब अगर ये कहीं और होता तो शायद पूरा का पूरा सोना जो है वो प्रॉपर्टी ओनर को मिल जाता, लेकिन ऑस्ट्रिया का लॉ ये कहता है कि अगर किसी को कुछ ऐसा खजाना मिला है तो आधा उसको मिलेगा और आधा जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, उस जगह का मालिक है, उसको मिलेगा। मतलब कहाँ कहाँ होता है ये सब। सही में मैं भी देखना चाहती हूँ अपने घर के पीछे वाली जगह पर, क्या पता मुझे भी कुछ सोना वोना मिल जाए रखा हुआ। जी हाँ, आप भी ट्राई कीजिए, मैं बोल रही हूँ। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। तो दोस्तों, टॉक्सिक इज हेयर। जी हाँ, टॉक्सिक जो है वो रिलीज हो गई है, और टॉक्सिक को रिलीज हुए वक्त हो गए हैं 2 दिन। जी हाँ, मूवी जा रही है जबरदस्त। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये मूवी आप अपने नजदीकी सिनेमा घरों में देख सकते हो। ऑफकोर्स इट्स 18+ मूवी, यू कांट वॉच इट विद योर किड्स। बट द थिंग इज, इसके अलावा आप देख सकते हो जिसके भी साथ आप जाना चाहते हो। एक बार ट्रेलर जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक ट्रेलर है और आपके लिए नहीं है ये मूवी, देन ड्रॉप कर दीजिएगा। अदरवाइज जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी अदाकाराएं मिलेंगी। कियारा आडवाणी मिलने वाली है इसमें आपको, साथ में नयनतारा इसमें आपको मिलने वाली है, साथ में इसमें तारा सुतारिया मिलने वाली है, और तो और इसमें और भी बहुत सारी अभिनेत्रियां आपको मिलेंगी। यश जो है वो सबके साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे, प्लस एकदम खतरनाक स्वैग गिरी भी आपको नजर आने वाली है। मूवी का नाम टॉक्सिक है, तो वो कितनी टॉक्सिक होने वाली है ये तो आप खुद ही मुझे बताएंगे जब आप इसे देख लेंगे, और हम इसका फुल रिव्यू भी करने वाले हैं, लेकिन उसमें अभी वक्त है। जी हाँ, सो इसी के साथ स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे इज स्टिल इन द थिएटर्स, इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग, यू कैन वॉच इट ऑन द इन द थिएटर्स, टेक योर किड्स। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि टॉक्सिक आप अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते हो, लेकिन स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे यू कैन लिटरली वॉच इट विद योर किड्स। एंड इसी के साथ द ओडिसी भी आप देख सकते हो, और अगर आप चाहते हो कुछ खतरनाक सा देखना, उसके लिए भी मैं आपको बताने वाली हूँ आप क्या देख सकते हो। तो अभी के लिए एक और गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, और फिर आपको मैं बताऊंगी क्या क्या और

जी दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपको बता रही थी क्या क्या आप देख सकते हैं नजदीकी सिनेमा घरों में इस वीकेंड। जी हाँ, क्योंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे के बाद वीकेंड है भाई। अब फ्राइडे को ही वीकेंड शुरू हो जाता है बेसिकली तो, बट फिर भी हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि फ्राइडे काम वाला ही दिन है, मतलब काम करना होता है। ऑल्दो हम मस्ती में काम करते हैं, झूमते हुए काम करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस। जी हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या आप देख सकते हैं, अब मैं आपको आगे और बताने वाली हूँ जो कि आप इस हफ्ते देख सकते हैं हॉलीवुड वाले केसेस में। मैंने आपको पहले बताया द ओडिसी आप देख सकते हैं, क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी है, ग्रीक माइथोलॉजी के एक बहुत ही फेमस चैप्टर पर बनी हुई है। स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे आप देख सकते हैं, दैट टू अपने बच्चों के साथ आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो आप मूवी देख सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको भी गॉथिक और हॉरर मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है, देन इंसीडियस का एक और चैप्टर यानी कि एक और पार्ट जो है वो रिलीज हो चुका है पिछले हफ्ते, और आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए इफ यू into gothic and horror movies। इसका नाम है Insidious Out of the Further and genre है horror and thriller, मतलब आपको thrillingly horror जो है वो serve किया जाएगा। इसी के साथ बटवारा 1947 भी आप देख सकते हैं, ये एक Bollywood movie है और ये Sunny Deol की movie है जो कि गदर में काम कर चुके हैं, और आपको पता है ये उनकी arena है, so ये कितना जबरदस्त काम करते हैं। इसके अलावा The End of Oak Street, मतलब एकदम से आप मजे से अपने मोहल्ले में रह रहे हो और आपको अगले दिन पता चलता है कि उठते ही आप देखते हो कि आप डायनासोर एरा में पहुंच गए, और बस वो डायनासोर एरा में आपको पता नहीं है क्या करना है क्योंकि आपने डायनासोर्स के साथ रहना नहीं सीखा है बचपन से। सो या आपको क्या करना है, कैसे करना है, वही कहानी है एक फैमिली की। और इसी के साथ पॉ पेट्रोल द डायनो मूवी भी आप देख सकते हैं, जो कि आप अपने बच्चों को ले जाकर देख सकते हो। इट्स अ एनिमेटेड मूवी, इट्स अ फन मूवी, कॉमेडी एनिमेशन एंड एडवेंचर आपको इसमें मिलने वाला है। सो या गो टेक योर किड्स एंड वॉच द मूवी एंड लेट मी नो आपको कैसे लगी। इसी के साथ पिछले हफ्ते एक और मूवी रिलीज हुई थी जो कि थी आवारापन 2। मिस मत कीजिएगा अगर आप इमरान हाशमी के फैन हैं, लेकिन ट्रेलर जरूर देखिएगा। ऑफकोर्स मोस्ट प्रोबेबली जो मूवी का ट्रेलर आपको बताएगा वो यही बताएगा कि आपको बच्चों के साथ नहीं जाना है, बिकॉज इट्स इमरान हाशमी की मूवी और ये आवारापन का सेकेंड पार्ट है जो कि बहुत टाइम पहले आई थी, और इसमें आवारापन के कुछ गाने भी हैं। सुनते हैं एक और गाना और फिर करते हैं और बात।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a

0: statement of who you are. Qplate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. और दोस्तों, इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त भी हो गया है. जी हाँ, जा रहे हैं हम. और आई होप आपके भाई लोग जब आपसे राखी बंधवाने आए होंगे तो वो कुछ ऐसे कैजुअली कुछ पहन के ना आए हों, वो अच्छे से रेडी होके आए हों. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रक्षाबंधन पे लड़कियां सारी मेहनत करती हैं. अच्छा दिखने की मैं बात कर रही हूँ. सो बहनें जो होती हैं वो इतने खूबसूरत खूबसूरत लिबास में जो है वो नजर आती हैं. और भाई लोग वो तो कुछ भी, कहीं की पुरानी टी शर्ट और कहीं का पुराना निकर लेके वो आ जाते हैं. मतलब कुछ भी, पुराना सा ट्राउजर, मतलब कुछ भी चल रहा है. जी हाँ, कुछ भी चल रहा है. और मुझे ऐसा लग गया है, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा भाई ऐसा करता है, बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि इट्स अ यूनिवर्सल थिंग. भाई लोग कहीं भी हों वो हर जगह ऐसा ही करने वाले हैं. रक्षाबंधन पे बहनें पूरी की पूरी मेहनत, खूबसूरत लिबास, पूरी एकदम पिक्चर परफेक्ट बन के पहुंचती है. लेकिन वहीं पर जो कैनवस में एक और इंसान दिखने वाला होता है वो कोई मेहनत नहीं करता, वो गंदे से कपड़ों में आ जाता है. सो आई होप आपके भाई ऐसा नहीं कर रहे होंगे और आपकी फोटोज जो है वो बहुत अच्छी आई होंगी. हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन आप सबको. और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही. मिलेंगे अब आपसे कल. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. कल होगी मुलाकात टॉप 10 हॉट 10 में. बाय, सी यू, टाटा.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 38 1360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
5: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
6: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
5: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
6: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
5: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
6: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
7: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
8: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
9: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
10: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
11: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर खुलेगा पहला विशाल कोस्टको। जी हां, ब्रिस्बेन के लोगों के लिए एक बड़ी खरीदारी की खुशखबरी। ब्रिस्बेन एयरपोर्ट के इंटरनेशनल टर्मिनल के पास $145 मिलियन की लागत से शहर का पहला भव्य कोस्टको वेयरहाउस खुलने जा रहा है। वहीं NRL रग्बी मैच में हुआ ऐतिहासिक नियम प्रयोग। ब्रिस्बेन के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर आज रात ब्रिस्बेन ब्रोंकस और मेलबर्न स्टॉर्म के बीच होने वाले मैच में रग्बी लीग यानी NRL का एक अनोखा नियम ट्रायल किया जा रहा है। इस नियम के तहत ट्राई अंक गंवाने वाली टीम तय करेगी कि वो किक ऑफ करेगी या बॉल रिसीव करेगी। इसके साथ ब्रिस्बेन पावर हाउस में होगा मिस्टर फर्स्ट नेशन कंपटीशन। कला और संस्कृति के दीवानों के लिए ब्रिस्बेन पावर हाउस में अक्टूबर में होने वाले मेल फेस्ट यानी कि मेल्ट फेस्टिवल के तहत ऑस्ट्रेलिया के पहले मिस्टर फर्स्ट नेशन प्रतियोगिता का ऐलान हुआ है, जो स्थानीय इंडिजिनस और ड्रैग कला को मंच देगा। वहीं क्विंसलैंड रिटेल और फूड इंडस्ट्री में भारी बढ़ोतरी। ब्रिस्बेन सहित पूरे क्विंसलैंड क्षेत्र में रिटेल और ग्रोसरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस तिमाही में शानदार तेजी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय फूड प्रोडक्ट्स की मांग में 15% का इजाफा हुआ है। वहीं मेलविले आइलैंड रोड अपग्रेड प्रोजेक्ट। जी हां, ब्रिस्बेन प्रशासन और प्रांतीय सरकार ने तटीय संपर्क को बेहतर बनाने के लिए मेलविले आइलैंड के सड़क नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक फंड की मंजूरी दे दी है। वहीं वर्कप्लेस पर रंग भेद खत्म करने के लिए नया कैंपेन। ब्रिस्बेन में मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दफ्तरों और कार्यस्थलों पर नस्लवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए आज से एक नया शहर स्तरीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले नेपाल बाढ़ में भारत का बड़ा कदम। जी हां, नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद भारत ने मदद का हाथ तेजी से बढ़ाया है। भारतीय वायुसेना के सैन्य विमान से राहत सामग्री की दूसरी बड़ी खेप काठमांडू भेज दी गई है। वहीं भारत चीन सीमा वार्ता पर बनी सहमति। भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को लेकर सकारात्मक खबर आई है। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बैठक में सीमा परिसीमन पर बातचीत आगे बढ़ाने और मुद्दों को जल्द सुलझाने पर आपसी सहमति जताई गई है। वहीं अंडमान और निकोबार को बीसीसीआई का तोहफा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। बीसीसीआई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अपनी एसोसिएट मेंबरशिप देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। वहीं बिहार में छात्रों के लिए 24 घंटे स्पोर्ट। बिहार सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए विद्या साथी नाम की 24x7 यानी कि 24/7 स्पोर्ट सेवा शुरू की है। इसके साथ फ्लाइट सेफ्टी पर DGCA सख्त। विमानन सुरक्षा को लेकर एयर इंडिया की एक फ्लाइट के दौरान पायलट के ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद DGCA ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब सभी एयरलाइंस के क्रू और पायलटों को रैंडम मेडिकल ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत बढ़ी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नया बजट अपडेट सामने आया है। बुनियादी ढांचे में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और भूमि अधिग्रहण के कारण इसे पूरे प्रोजेक्ट की संशोधित लागत अब लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसके साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले मेटा पर $18 बिलियन का जुर्माना और समझौता। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने अमेरिकी अदालतों में बच्चों की सोशल मीडिया लत से जुड़े एक बड़े मामले को सुलझाने के लिए $18 बिलियन का भुगतान करने पर सहमति जताई है। वहीं नेपाल बाढ़ पर यूएन की वैश्विक मदद। नेपाल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू कर दिया है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रभावित इलाकों में दवाइयां, भोजन और सुरक्षा टीमों को तुरंत तैनात करने का आदेश जारी किया है। इसी के साथ मध्य अमेरिका में एल नीनो का असर अलर्ट जारी। जलवायु परिवर्तन और एल नीनो मौसम चक्र के कारण मध्य अमेरिका के देशों में सूखे और पानी की भारी किल्लत हो गई है। पनामा देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। वहीं अल सल्वाडोर और होंडुरस ने पूरे देश में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं गाजा में शांति की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम। गाजा में लंबे समय से जारी संकट के बीच पहली बार सशस्त्र समूहों ने अपनी हथियार सौंपने और पूरा प्रशासनिक नियंत्रण संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्रभावित प्राप्त एक संक्रमणकालीन प्रशासन को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। इसके साथ रूस और अमेरिका के अधिकारियों की मॉस्को में बैठक। वैश्विक तनाव के बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने मॉस्को का अचानक दौरा किया है। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच हुई इस बैठक को वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं यूरोपीय संघ के बजट को लेकर ब्रसेल्स में अहम मंथन। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने घोषणा की है कि यूरोपीय संघ को इस साल के अंत तक अपना नया दीर्घकालिक बजट पारित करना होगा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले कायरन पोलार्ड ने रचा इतिहास, T20 में बनाए सबसे ज्यादा रन। वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड ने T20 क्रिकेट में नया रिकॉर्ड कायम किया है। पोलार्ड ने इंग्लैंड के जोस बटलर को पीछे छोड़ते हुए T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड फिर से अपने नाम कर लिया है। वहीं भारत बनाम श्रीलंका दूसरा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर। कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय स्पिनरों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। हालांकि फॉलोऑन का सामना कर रही श्रीलंकाई टीम ने दूसरी पारी में वापसी की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम इस वक्त सीरीज पर कब्जा करने के बेहद करीब खड़ी है। वहीं T20 में सुनील नरेन का ऐतिहासिक कारनामा। क्रिकेट के मैदान से एक और रिकॉर्ड, वेस्टइंडीज के स्पिनर सुनील नरेन T20 फॉर्मेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के चुनिंदा गेंदबाजों के क्लब में शामिल हो गए हैं। वहीं फिजिकल फिटनेस पर भारतीय हॉकी टीम का नया प्लान। वर्ल्ड कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय हॉकी टीम के प्रबंधन ने खिलाड़ियों के स्प्रिंटिंग और फिटनेस आंकड़ों को सुधारने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कैंप लगाने का फैसला किया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Digicel, better together.
4: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
5: All event Shan ke saath pesh karta hai Grand Bhajan Night. सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम। ग्रैंड भजन नाइट, कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। grand.
6: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding area.
7: Hi, this is Amitabh Bachchan.
8: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
9: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
10: Hi, this is Salman Khan.
11: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
12: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
14: Hi, main hoon Tulsi Kumar. Aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani.
15: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
16: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
17: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicellpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सबके लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बन द्वारा अधिकारित।
2: नवीं क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 FM ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा सारा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असीं ढेर सारियां थोड़े नाल थोड़ियां मेरिया अपनियां सब दियां कुछ यादां तां असीं कर लवांगे कुछ किसे दियां गल्लां कर लवांगे कुछ गीत ज्यादा सुनांगे। फिलहाल थोड़ी पसंद दे मेरी पसंद दे सब दी पसंद दे रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा। बस थोड़े सुनेहियां दा तां इंतजार है ते फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसवानी 101.1 FM साडे फेसबुक पेज है जी bisoni@bisoni.com साडे ईमेल आईडी है जरिए जेड़ा भी तुहानूं चंगा लगदा है वो अपनाओ पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने वंसर हमारे हम ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल सी बने हुए। देखो सब तो पहला गल कर दे फिल्म दे बजट की। देखो किसी मूवी का बजट उसके हिट या फ्लॉप होने के पैमाने का सब तो वड्डा फैक्टर होंदा है। फिल्म की कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीजा समझना जरूरी होंदिया ने, जिवें लैंडिंग कास्ट, इस विच प्रोडक्शन दे खर्चे शामिल होंदे ने जिवें एक्टर्स दी फीस, क्रू, सैट दे खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट्स, ते इस विच ओ खर्चा आउंदा है जो किसी मूवी दी मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च हुंदा हुंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय हुंदा है हिट या फ्लॉप, यही दस्सदे आं। पप्पी लैगी सुणो।

0: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਹਾਂ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di aag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 ते जी आर जी संदेश चौलक दे नाल तुसी बने होए हो। हाँ जी, तो देखो हुण असली कमाई का सच जानते हैं तो लोग अक्सर लोग समझते हैगे ने कि जेकर फिल्म ने 100 करोड़ कमाए हैगे ने तो बजट 80 करोड़ का हैगा तो फिल्म हिट है। ये पूरी सच्चाई नहीं है। फिल्म की कुल कमाई का एक वड्डा हिस्सा टैक्स ते सिनेमा घर मालिकां दे कोल जांदा हैगा है। निर्माता ते डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर से हाथ विच जो पैसा आता है उसनू डिस्ट्रीब्यूटर शेयर करते हैगे ने। फिल्म तद हिट मनी जाती है जब डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर उसकी फिल्म खरीदने की कीमत तो ज्यादा होगी।

0: Together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ
3: ਇਵੈਂਟ ਸ਼ਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ग्रैंड भजन नाइट सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम। ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452584926। ग्रैंड भजन नाइट।

0: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
1: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya national lung cancer screening program shuru hua hai. Ye saral hai, nishulk hai aur ye lakshanon ke samne aane se pehle hi lung cancer ka pata laga sakta hai. Yadi aapki dhoomrapan karne ki history rahi hai तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने 101.1 FM ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। हुण जिहड़ी मैं वर्ड दी गल कर रही हां, शायद कईयां ने पहली बार सुनिया होना है, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा विच समझिया जावे तो स्लीपर हिट ओ फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी भरकम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज हुंदी है। शुरुआत विच इसकी कमाई बहुत घट पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ ते दम ते फिल्म रफ्तार फड़दी है ते फाइनली बॉक्स ऑफिस ते ब्लॉकबस्टर साबित हुंदी है। जिवें सैयारा, कांतारा, बारहवीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal janglaan vich agg lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di agg to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही
2: डाउनलोड करें। सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

उम्मीद है कि थानू ये सब कुछ जरूर समझ आ गया होना है ना, जरूर समझ आ गया होना, क्योंकि जेडे बॉलीवुड लवर है कि बॉलीवुड नहीं मूवी लवर्स है कि नहीं, बेशक को कोई भी बॉलीवुड दी देखते हो, टॉलीवुड दी देखते हो, हॉलीवुड दी देखते हो, साउथ दी देखते हो, उन्होंने ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगते होंगे जाना नहीं, तो थोड़ा जरूर वधिया लगे होने हैं। तुसी बाकी जरूर दसो सानू कि थोड़ा किस तरह की जानकारी तुसी चाहते है। क्यों रेडियो बिस्वानी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी, तो bisswani@bisswani.com साडी ईमेल आई डी है। सर जेड़ा भी अपनाना चाहते हो अपनाओ, साडा गलबात जरूर करो। बाकी कल करते मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे, इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
5: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
6: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
5: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
6: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
5: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
6: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
7: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006644355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
8: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
9: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
10: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
11: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की झप्पी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोच कर पिछला और अगला

0: ताल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।
1: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: दीवाना

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूंगा।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: अनु।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस. फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर. सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है. ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं. हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा. प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट. निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम. On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

इंसान की जिंदगी क्या है? सब कुछ एक झटके से खत्म हो जाना है, मगर इंसान गाफिल है, मदहोश है, अपनी जिंदगी में मगन है। इसका मुख्तसर सा ये सफर किसी भी वक्त इख्तिताम पसीर हो सकता है। सो अकलमंद वही है जो आज के बजाय कल का सामान

अल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम। ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452584926। ग्रैंड भजन नाइट।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: रेडियो 79.1, जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

जी मित्रों, आज बड़ा खूबसूरत सा दिन है। शनिवार आ चुका है और 29 अगस्त है। बस ये भी महीना जाने वाला है और आप सबको हम यहाँ रेडियो ब्रिजबानी के स्टूडियो से स्वागत कर रहे हैं संगीत सरगम नामक कार्यक्रम में। इस समय हमारे ब्रिजबन में तापमान 16 डिग्री है और मौसमी दफ्तर ब्रिजबन में जो ब्रिजबन ने मुझे जो समाचार प्रदान किए हैं आज का मौसम का, कुछ इस प्रकार है। आज के मौसम के खबरों में साउथ ईस्ट क्वींसलैंड के लिए कहा गया कि ज़्यादातर धूप निकलेगी यहाँ पर और ब्रिस्बेन में 22 रहेगा दिन में, रात्रि को 13, हवा का रफ्तार भी 13। 6:05 पर सूर्य उदय हुआ है, 5:32 पर सूर्य अस्त होगा। और साथ में मित्रों आपको कह दूं कि इप्सविच में ज़्यादातर धूप निकलेगी, समय समय पर आकाश पर घटाई छाई दिखाई देगी, 23 रहेगा दिन में, रात्रि को 11, हवा का रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और सनशाइन कोस्ट में 21 रहेगा दिन में, रात्रि को 15, हवा की रफ्तार 19, यहाँ भी आकाश पर घटा समय समय पर छाई दिखाई देगी। और गोल्ड कोस्ट में धूप निकलेगी 22 दिन में, रात्रि को 14, हवा की रफ्तार 18। फिजी द्वीप ले चलते हैं जहाँ नेंडी में धूप निकली हुई है, 6:21 पर सूर्य उदय हुआ है, 6:01 पर सूर्य अस्त होगा। और फिर यहाँ पर दिन में तापमान 26 रहेगा, रात्रि को 22, हवा का रफ्तार 13। और लंबासा में ज्यादा धूप निकलेगी और यहाँ पर कहते हैं भाई क्या बात है, 28 रहेगा दिन में, रात्रि को 22, हवा का रफ्तार 10। और सुबह में ज्यादा आकाश पर घटा छाई रहेगी और समय समय पर धूप भी निकलेगी, 27 दिन में, रात्रि को 21, हवा का रफ्तार 11। वेलिंगटन ले चलते हैं जहाँ पर इस समय धूप निकली हुई है और 13 दिन में, रात्रि को 10, 34 विंड स्पीड। ओकलैंड में बारिश, बड़ी बारिश कह रहे हैं होगी, और 15 दिन में, रात्रि को 12, हवा की रफ्तार 21। पौने सात बजे सूर्य उदय हुआ है, 6 बजे सूर्य अस्त होगा। नई दिल्ली में धूप निकलेगी, 36 मैक्सिमम, 28 मिनिमम, 16 विंड स्पीड, 5:33 सनराइज, 6:45 सनसेट, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगा। अमृतसर में यही हाल है, वेरी हॉट, 37, 28 रात को, 6 हवा का रफ्तार। और बम्बई में आकाश पर घटाई छाई रहेगी, यहाँ कुछ राहत मिलेगी लोगों को, 31 रहेगा दिन में, रात्रि को 27, हवा का रफ्तार 24। तो ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम के खबर। और आपका दिन कैसे गुजरा है, रात कैसे गुजरी या वीकेंड कैसे बीता है? बहुत लोग के भाई कहीं सुबह है, कहीं शाम है, कहीं रात्रि है, लेकिन हमारे यहाँ खूबसूरत सा सुबह है। ईश्वर की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका दिन अच्छी तरह से बीतेगा। और अत्यंत खुशी की बात है कि कुछ अरसों के बाद राव जी अब फुर्सत पा चुके हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे 7:15। बहुत लोगों का मांग था भाई राव जी कहाँ गए, राव जी कहीं नहीं गए थे, यहीं थे, लेकिन बेस्ट थे, अब आ गए हैं, उनसे फिर कुछ हम बातें करेंगे। और आप भी कह दूँ कि क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, बहुत कुछ हो रहे हैं, पूजा पाठ में लोग लीन हैं, कहीं पर कुछ और हो रहा है, शादी ब्याह भी हो रहे हैं, पार्टीज हो रहे हैं, तो जो भी हो रहे, जहाँ भी शरीक होने जा रहे हैं भाई, खूबसूरती से जाएं, खुशी खुशी जाएं, प्यार मोहब्बत के साथ जाएं और यही करें कि आपका अच्छी तरह से समय बीते। तो चलो देर ना करते हुए, जब देख रहे हैं कि भाई समय लगभग कितना रहा, 23 मिनट रह गए हैं 7 बजने में, और पहला गीत से आपका मनोरंजन हम कराते हैं। प्यारा सा गीत लेकर आया हूँ मैं और उम्मीद कर रहा हूँ मित्रों कि आपको जो गाना पसंद करके लाए हूँ अच्छा लगेगा। सीने में दिल, चलो भाई क्या बात है, अलका याग्निक जी उदित जी के साथ इसे अदा कर रहे हैं, आनंद लीजिएगा।

जी दोस्तों, 19 मिनट रह गए हैं इस समय 7 बजने में। संगीत सरगम प्रोग्राम आप रेडियो ब्रिजबान के माध्यम से सेवन इन माइल रॉक्स ब्रिजबान ऑस्ट्रेलिया से सुन रहे हैं। जहां भाई हमारे यहां क्या है समय जिसे मैंने कह दिया 18 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। लेकिन बड़ी बात है कि शनिवार की सुबह है, प्यारा सा दिन है। उम्मीद कर रहा हूँ आप जो हाल में हैं ठीक ठाक हैं, जहाँ भी हैं जो भी कर रहे हैं खुशी खुशी कर रहे हैं। अगर कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो आई होप यू आर एंजॉइंग ए टाइम। और हम आगे चलेंगे, आगे चलते हुए आपके लिए कुछ गीत हैं उसे बजाएंगे। और अगला जो गीत है, गीत तो वही है, बोल लगभग वही है, लेकिन लिरिक्स अलग हैं। पर्दे पर शाहरुख खान जी और जूही चावला और राजू बन गया जेंटलमैन से इस गीत को मैं लिया हूँ। कुमार सानू साहब आ रहे हैं अलका याग्निक जी के साथ। चलो, सीने से दो गाने जुड़े हैं, पहला बत सुना दिया था, अब दूसरा।

0: जय मित्रों, आई लव यू, आई लव यू आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते। क्या बात है, कमाल के गीत था। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा आपको। चलें विज्ञापन की तरफ। ये विज्ञापन है, उसके बाद फिर कुछ गाने।
1: ताल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त।
0: जी मित्रों, ये हो चुका है और क्षमा चाहता हूँ, ये तो हो चुका है कल। चलो दूसरा विज्ञापन हम आपको सुनवाते हैं।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: ये मित्रों आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हुए चलें अगला गीत के तरफ। और अगला गीत कुमार सानू जी द्वारा अदा किया गया है, मिस्टर आशिक का गाना है। प्यारा सा गीत है, मेरा चांद मुझे आया है नजर।

0: मुझे आया नजर जी हाँ जरूर चांद नजर आ गया। ये तो देखा भाई यूट्यूब पर ऐसे ही है दिखा गया कुछ ना कुछ। तो चलो आगे बढ़े खबर के साथ।
1: हाय दिस इज अमिताभ बच्चन
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय गाइस आई एम मनमीत वन ऑफ द मीत ब्रदर्स आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: हाय दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।
0: और मित्रों हम आगे बढ़े आगे बढ़ते हुए चलें। एसपी बाला सुंदरम जी और साथ में हैं कौन कलाकार एक और इसमें बहुत ही प्यारे गाने हैं ये तो अलका जी हैं। आज अलका जी का ज्यादा है फीमेल प्लेबैक के साथ। तो चलो सुनते हैं ये गाना।

जय मित्रों, इस समय ठीक 7 बज चुके हैं रेडियो ब्रिजबानी की घड़ी में और आप परमानंद के साथ संगीत सरगम नाग कार्यक्रम सुन रहे हैं जो हर शनिवार को 6:30 से 8:30 बजे के बीच मैं आपके सेवा में लेकर उपस्थित हो जाता हूं। यही ख्याल के साथ कि जैसे मैं जुड़ा हूं आपके साथ, आप भी मेरे साथ जुड़े होंगे और जुड़े रहेंगे। क्या कहूँ आगे मैं, मौसम प्यारा है। इसे प्यारे मौसम में देखिए कैसे सब कुछ बदल रहा है ना, मौसम बदल रहा है, खूबसूरती आ रही है, हमारा सोचने का ख्याल भी बदल रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मौसम बदलेगा हम भी बदलेंगे मौसम के साथ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ खबर है। खबर लेने से पहले आपको बतला दें कि 8:30 बजे निविया जी आ जाएंगी और टॉप 10 लेकर आएंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिजी का कुछ देख रहा था अखबार और फिजी सन में जो प्रसारित हुई खबरें वो कुछ इस प्रकार हैं। इस समय जो जून 30 तारीख को फिजी में आंकड़ा जो इकट्ठा किए थे उसके अनुसार फिजी का जो पॉपुलेशन है वो 938,113 और 61.3% लोग जो है वो ज़्यादातर शहरों में रहते हैं, यानी कि दिल्ली विन सिटीज। और अब जानते हैं कि आम चुनाव होने जा रहा है और फरवरी 2027 से पहले फिजी में आम चुनाव हो जानी चाहिए और जितने वोटर्स अभी तक रजिस्टर हुए हैं उनके नंबर कुछ ऐसा है, 723,771 वोटर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब फिजी में जो हमारे ई तवके बोलते हैं या कायवित्री लोग जो रहते हैं उनका संख्या है 63% और भारतीयों का घटकर 38% हो गया। थोड़ा बड़ा है बट आधा बहुत कम है, 63% versus 38%। तो ये फिजी के कुछ खबर थे और आपको मैं सोचा चलो सुना दूं। और याद रहे थोड़ी देर में हम राव जी को लेकर आ जाएंगे। फिलहाल हम चलेंगे एक मज़ेदार गीत के साथ। और मजेदार गीत को कौन सुनाएगा, किशोरदा के अलावा और कौन सुनाएगा आपको? सच्चे के नहीं, किशोरदा ही सुनाएंगे आपको। और प्यारा सा गाना है और गीत के बोल हैं कि मेरे महबूब कयामत होगी। और आगे हम सुनाते हैं आपको किशोर दी क्या करते हैं। सुनिए जी, आनंद लीजिएगा।

0: तो प्रिय श्रोतागण, ये था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का लोकप्रिय गीत जो किशोर दा आपको सुना रहे थे। चलो हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते कुछ विज्ञापन भी लेते चले हम। तो अगला क्या आ रहा है ये सुनिए।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़े। दूसरा गीत है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते, कभी नहीं आते। किशोर दा

0: जी मित्रों, क्या बात था, बढ़िया सा गीत। इसी में एक थोड़ा सा मैं भी चलो कुछ अपना बोल दूं कि ना दोस्ती ना दुश्मनी के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। नमस्कार राव जी, स्वागत है रेडियो ब्रिजबानी पर आपका। और कैसे हैं आप?
1: नमस्कार परमानंद जी, आज बड़ा सुंदर सुंदर गीत आप ला करके बजा रहे हैं
0: जी, तो बड़े आगे राव जी सुनाई दे रहा है जी। हाँ बोलिए।
1: आज का समाचार है मोम का शहजादा। एक बार अकबर और बीरबल बाग में घूम रहे थे। अकबर अपनी गोदी में अपने पोते को अपने पोते को लिए हुए थे। तभी अकबर ने बीरबल को चिढ़ाने के लिए कहा, बीरबल तुम हिंदुओं के भगवान सचमुच अजीब है जी। बीरबल ने सोचा कि बादशाह अकबर इस्लाम की जितनी इज्जत करते हैं उतना ही हिंदू धर्म का भी आदर करते हैं, ये मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने बादशाह से पूछा, यहां पर क्या हुआ महाराज, कुछ हम भी तो सुने, जरा कुछ कहिए। तुम अपने कृष्ण को देख लो, जब भी उनके भक्त उससे सहायता मांगते हैं वे खुद दौड़े चले आते हैं, क्या उनके पास सेवक या नौकर नहीं है? बीरबल ने बादशाह की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मन ही मन एक योजना बनाई। वह पुतला बनाने वाले के पास गया और बोले कि तुम मोम का एक पुतला तैयार करो, वह देखने में एकदम जहांपनाह के पोते जैसा होना चाहिए। शीघ्र ही पुतला तैयार हो गया और बनाने वाले ने बनाकर तैयार कर दिया। बीरबल ने उसे वैसे ही कपड़े और गहने पहना दिए। अब वह एक दम जापना के पोते जैसा दिखाई दे रहा। उसके बाद बीरबल ने पोते के नौकर को बुलाया और कहा, तुम इस पुतले को अपनी बाहों में उठाकर महल के बगीचे में ले जाओ, वहां तालाब के पास पैर फिसल जाने का बहाना करना जिससे पुतला पानी में गिर जाए। बादशाह अकबर बगीचे में पहुंचे, साथ में बीरबल भी थे। नौकर ने ठीक वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। बादशाह ने देखा कि उसका पोता पानी में गिर गया, क्योंकि उसी प्रकार का पोता का उस पुतले को बनाए थे। वे दौड़े और स्वयं तालाब में कूद गए। उन्होंने पुतले को उठाया और कहा, अरे अल्लाह का शुक्र है, ये तो मोम का पुतला है। बीरबल ने तालाब के पास पहुंच गए। उन्होंने अकबर से कहा, लेकिन जहां पाना आप खुद तालाब में क्यों कूद पड़े? मदद के लिए आपके पास कोई आदमी या नौकर नहीं है? सैकड़ों है बीरबल, लेकिन अपना पोता मुझे इतना प्यारा है कि वह कि मैं किसी को बुलाने तक इंतजार कैसे कर सकता हूँ। अकबर ने बताया, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया जापना, इसी तरह भगवान कृष्ण को भी उनके भक्त बहुत प्यारे हैं। बीरबल ने उसके मिलान में जवाब दिया। अकबर ने बीरबल की बात को समर्थन किया, लेकिन वो खिसियान था। तुम ठीक हो बीरबल, बीरबल की बात उसके समझ में कितना प्रकार के आया, कैसे आया, ये तो वही जानता है। तो एक छोटी सी कहानी आज मेजबानी के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राव जी, आप आए और लोगों की मांग को पूरा किए। उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे आप आते रहेंगे और अच्छा लगा राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर मिलते हैं शनिवार को। नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
0: तो मित्रों, ये थे राव जी और अपनी वाणी सुनाए। और लोगों को कह दूं कि हर शनिवार को 7:15 के आसपास हम राव जी को लेकर आएंगे और वो अपनी वाणी आपको सुनाएंगे। तो चलो आगे बढ़ें, दो विज्ञापन सुनाते हैं आपको।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसोक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
0: और मित्रों, इस समय 22 मिनट हुए हैं 7:00 और संगीत सरगम प्रोग्राम में अगला पुराना गीत जो आपके लिए मैं बजाने जा रहा हूँ, उसे अदा कर रहे हैं मोहम्मद रफी जी और साथ दे रही हैं सुमन कल्याणपुर जी। अब एक गीत जो है पहली बार लो आप सुने होंगे 1965 में, और 2026 हो गया यानी कि 61 ईयर्स अगो, लेकिन आज उतने ही कमाल का, उतने ही मजेदार गाना है। आन लीजिए।

0: जी मित्रों, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। 27 मिनट हुए इस समय 7 बजकर और रेडियो ब्रिजवानी पर मैं परमानंद हूँ संगीत सरगम प्रोग्राम के साथ। चलें प्रिंस ज्वेलर्स का एक खबर सुने।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: और आगे बढ़ते मित्रों, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। 27 मिनट अब तो 29 मिनट हुए हैं 7 बजकर। एक गीत के बाद लाएंगे जन्मदिन की खबरों का। और आगे बढ़ते हुए इस बार रफी जी आ रहे हैं मंडी ने, महेंद्र कपूर साहब आ रहे हैं लता जी के साथ। बहुत दिनों के बाद महेंद्र कपूर जी का गीत बजाने जा रहा हूँ, तुमने हंसी ही हंसी में क्यों दिल चुराया जवाब दो। और पिक्चर का नाम है घर बसा के देखो।

जी मित्रों, तुमने हंसी हंसी में क्यों दिल चुराया जवाब दो, आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता जी की खूबसूरत आवाज़ों में। और हम आगे बढ़ते हुए चलें उन लोगों को याद कर रहे हैं जिनका आज जन्मदिन है। आपका जीवन में ऐसा दिन बार बार आता रहे, बहुत खूबसूरती से अपना जन्मदिन को आप मनाइए और बहुत सारी बधाइयाँ हमारे तरफ से और मालिक की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और जिनकी शादी की सालगिरह है उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं, यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आपका जो विवाहित जीवन है खूबसूरती से गुजरे और आप जो हाथ थामा है उसे थामे रहिए और प्यार से अपने जीवन को व्यतीत करिए और आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे। तो ये बातें हैं कुछ आपके लिए और हम आगे बढ़ते हैं। एक गीत है ख़ास तौर से आप लोगों के लिए, क्योंकि ये गाना इतना बढ़िया है मैं क्या बोलूँ। इसके जो लिरिक्स हैं जस्ट लिसन टू दोस, ठीक है। अमित कुमार जी आ रहे हैं लता जी के साथ, किशोरदा के बेटे हैं अमित। अब सुनते हैं, बहुत प्यारा सा बोल है गीत के, मित्रों सुनिए।

0: दोस्तों चलें हम विज्ञापन सुने, दो विज्ञापन बजाते हैं आपके लिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: जय मित्रों, आंखें भी होती हैं दिल की जुमा, अभिजीत साहब सुना रहे थे। ये गाना जितनी बार आप सुनो जी चाहता है इसको बार बार सुने, क्योंकि जिस खूबसूरती सूर्य प्रदान करते हैं कमाल की बात है। तो चलो आगे हम बढ़े, आगे बढ़ते हुए कुछ खबर भी लेना है हमारे स्पॉन्सर्स का। तो अगला जो है वो रे सोला पैनल्स का विज्ञापन है आपके लिए।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: अमित रॉय, इस विज्ञापन के साथ साथ 13 मिनट रह गए हैं 8 बजने में। 8 बजे रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया में लेकर आएंगे और 8:30 बजे आप सुन सकेंगे निविया जी के साथ टॉप 10। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार अभिजीत जी आ रहे हैं अलका जी के साथ, वादा रहा सनम।

जी मित्रों, वादा रहा, बढ़िया सा गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं। अगला जो गीत है, मेरा तोहफा तू कर ले कबूल, बहुत प्यारा सा ये भी दो गाना है और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा। और रेडियो ब्रिजबानी आप सुनते रहिए, आपकी अपनी पहचान, जिसका प्रसारण हम 1700 AM के माध्यम से समरिन माल रॉक्स ब्रिजबान ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं। शनिवार का सुबह है, प्यारा सा दिन है, ऐसे खूबसूरत दिन में, मौसम में हम आपको याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे कैसे देखो समय जा रहा है, मौसम प्यारा हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और ऐसा है कि भाई अब लोग जल्द उठकर खाट छोड़कर थोड़ा कसरत वगैरह करने निकलेंगे, वॉक करने निकलेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं सानू साहब अलका जी के साथ आरंभ।

जी मित्रों, क्योंकि मैं लहंगा हुआ बड़ा महंगा, मैं चुनरी ले आई, क्या बात है, अच्छा लगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अगला जो गीत है बहुत प्यारा सा गीत है, इसे अदा कर रहे हैं दो कलाकार, हमेशा दो ही रहते हैं ना, दिवट है जब तो दो कलाकार होते हैं, जिसमें इस बार अभिजीत साहब हैं। तो चलो देखते हैं क्या सुनाते हैं हमें ये, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये गाना अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लेकर आएंगे रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया, तो सुनते हैं इस गीत को।

0: कि आपको पहले भी कहीं देखा है, 8 बज चुका है, अब समय हुआ रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम, इसलिए गीत को हम यहीं छोड़ रहे हैं और चलते हैं रानी क्रिएशंस के विज्ञापन के तरफ और शुरू करते हैं 15 मिनट का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम रानी क्रिएशंस की ओर से, केम छो, राम राम सबको, और निसंबोला चलें, खबर के साथ बढ़ें आगे।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.
0: Mitro, swagat hai aapka is 15 minute ke segment mein. Umeed kar raha hu aapka sab theek thak hoga. Pichle saptah ke baad phir naya saptah laga hai, weekend aa chuki hai aur bas एक दो दिन बचे हैं, ये विंटर भी जा रहा है, चला तो गया लगभग, और गर्मी का मौसम आ चुका है, बाहर घूमने फिरने शॉपिंग वगैरह करने के लिए अच्छा दिन आया है और अच्छे दिन आएंगे। मोदी साहब भी ये कहते रहे कि अच्छे दिन आएंगे, तो हम भी कह बोलें कि भाई आपका जीवन में अच्छे दिन आएंगे और सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। और जहाँ तक रानी क्रिएशंस के सवाल है, ये कह दें कि यहाँ पर हर प्रकार के कपड़े आपको मिलते हैं और मिलेंगे, जैसे आप विज्ञापन में सुन रहे थे। और ख़ास बात यह है कि आंखों से देखा, फील करने के बाद खरीदना बात अलग है, वो आप पहनोगे। अगर ऑनलाइन वगैरह मंगा रहे हैं तो कभी काल जो देख रहे हो ना वो स्क्रीन पर, वो सही आपको इमेज जो आता है वो मेल नहीं खाता है। रंग कभी अलग होते हैं, कभी साइजेस की तकलीफ होती है, कभी लेंथ का गड़बड़ी होता है, ये सब होता रहता है। और सब नहीं, कभी कभी ये मुश्किल का सामना लोग कर लेते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई स्थानीय आएं, ये लोकल शॉप है, यहाँ पर देखें, चाहे शादी कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, या किसी को गिफ्ट देना है तो, और या फिर पहली बार अगर ये प्रोग्राम को सुन रहे हो रानी क्रिएशंस का, और कभी रानी क्रिएशंस शॉप घूमे नहीं, तो एक बार घूम कर देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर लोकली अवेलेबल है। फिर आप सोचोगे अरे यार क्यों मैंने बाहर से मंगाया, इसका ब्लाउज नहीं फिट हो रहा, इसका शर्ट का साइज छोटा है, तो ये सब बातें आपके यार सूट साइज से फिट नहीं हो रहा, दो देखा था स्क्रीन पर वो नहीं आया मेरा, तो ये सब मुश्किलों से दूर होने के लिए आप रानी क्रिएशन शॉप में आए और मनपसंद के हर प्रकार के कपड़े, बच्चों से लेकर बड़ों तक, शादी का सब कुछ यहाँ मिलेगा और एक्सेसरीज भी बहुत सारा मिलेगा। तो चलें आगे बढ़ें, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से लिया गया ये गाना आपके लिए।

जी मित्रों, बहुत प्यारा सा गीत था। और ये जो प्रोग्राम है, सेगमेंट आप सुन रहे हैं, ये रानी क्रिएशंस के सौजन्य से हम आपके सेवा में लेकर आए हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो गाने पसंद हमें आप बजा रहे हैं यहाँ से, आपको पसंद आ रहे होंगे। और आपको बता दें कि रानी क्रिएशंस में सब कुछ आपको मिलेगा, कपड़े से लेकर सजने सजाने के लिए ज्वेलरी और एक्सेसरीज में मेन का स्टॉल मिलेगा, जूती मिलेगी, पगड़ी मिलेगा और रुद्राक्ष के माला वगैरह भी मिलेंगे। और डीवीडीज का भी रेंज क्लियर कर रहे हैं इस समय रानी क्रिएशंस, तो यहाँ पर आपको विशेष घटाए हुए दामों पर आपको डीवीडी रानी क्रिएशंस शॉप से मिलेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। पता एक बार फिर पता बतला देता हूँ, 33 बालाकलाबा स्ट्रीट उलंगेवा में, ब्रिस्बन सिटी के बहुत ही करीब। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगला गीत के साथ, इश्क तुम पे ऐसे।

जी आने लगा है इश्क तुम पे ऐसे, क्या बात है। बहुत प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, और एक गीत का और समय है, इसे बजा देते हैं। इश्क है गीत के बोल हैं, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स प्रिय श्रोतागण।

0: जय मित्रों, इसी गीत के साथ साथ 15 मिनट का सेगमेंट यहीं पर समाप्त हो रहा है। हर प्रकार के शॉपिंग के लिए रिमेंबर द नेम रानी क्रिएशंस, जो स्थित हैं 33 बालाक्लावा स्ट्रीट उलंगेवा में, सप्ताह के सातों दिन खुले रहते हैं। यहाँ पे आपको हर प्रकार के कपड़े, कपड़ों के साथ साथ सन्य सजाने के लिए ज्वेलरी और एक्सेसरीज में DVDs वगैरह, चूड़ी ये सब मिलता है, और स्टॉल्स वगैरह, मेंस वेडिंग शूज, टेबन्स और बहुत कुछ है। साड़ीज हैं बहुत सारे रेंज में, और उसके साथ साथ रेडीमेड ब्लाउजेस, रेडीमेड साड़ीज, लहंगा वगैरह कितना बतला है सब कुछ है। बच्चों के लिए, सबके लिए कपड़े हैं, और पूजा पाठ कर रहे हैं तो फैब्रिक भी आपको यहाँ मिलेगी। तो अगले शनिवार तक आज्ञा दे रानी क्रिएशंस की ओर से अ वेरी हैप्पी वीकेंड, गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू, और साथ में हैप्पी शॉपिंग एट रानी क्रिएशंस। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट, उलंगेवा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.
0: Amitro, ek bar phir dohra deta hoon ki Sangeet Sargam program 8:30 baje khatm hoga aur uske baad aap ho jayenge Nibya ji ke saath 8:30 baje se, aur phir कल का जो, और फिर दिन में तो प्रोग्राम चलता रहेगा, लेकिन कल का जो लाइनअप है 8 बजे से वेदवाणी आप सुनेंगे नंद किशोर दास प्रभु जी के साथ, और उसके बाद में 9 बजे से जतीश पूरन जी आ जाएंगे मिक्स प्रोग्राम लेकर, और फिर रोहित सिंह जी 12:30 बजे आएंगे, सुशीला जी उसके बाद आएंगे। तो ये प्रोग्राम ऐसे चलता रहेगा, और सुनते रहिए, बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग धार्मिक प्रोग्राम वगैरह सुबह के बेला में सुनते हैं, अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से पंडित सुरेश जी इसको हम ले लेते हैं। प्रणाम पंडित जी, मैं आपको ले लिया हूँ समय अभाव के कारण, बोलिए।
2: ठीक है, आशीर्वाद परमा जी और रेडियो सुनने वाले को हमारा नमस्कार है, और चलते हैं। जबकि आज से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है जगह जगह पर, और विशेषकर सनातन धर्म 350 विमली रोड पर बड़े तादाद में लोग पहुंचेंगे, और सभी के लिए यही सूचना है, अपने बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ, जहां भी पता चले कि अष्टमी मनाया जा रहा है, जरूर पहुंचे और भगवान की नाम में शामिल होकर और अपने जीवन को सार्थक बनाए। परमा जी
0: जी, पंडित जी, और अब देखिए जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, एक ऊर्जा अलग अलग अंदर अंदर पैदा होने लगे है, ठीक है, तो कुछ,
2: हाँ। कुछ भगवान की कृपा यही होती है ना
0: जी।
2: जब मौसम देखो, अब शायद हमें स्वेटर वगैरह नहीं पहनना पड़ेगा अष्टमी में।
0: हाँ बिल्कुल नहीं, और मौसम भी ठीक है, धूप भी कम है, बहुत ज्यादा धूप भी नहीं रहेगी, और लोगों को आने जाने में सुविधाएं बहुत रहेंगे, और बारिश थोड़ी कम होगी, तो ये सब बातें हैं। पंडित जी एक छोटा सा प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और कुछ लोग दुखी हैं घर में, तो एक छोटा सा प्रार्थना कर दें सब मानव कल्याण के लिए।
2: चलते हैं, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी दया दृष्टि कृपा बने, यही प्रार्थना कर सकते हैं परमात्मन से, और क्योंकि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, देवता जन भी हैं, वो प्रभु को पार ना पा सके हैं, तो हम छोटे हैं, मूढ़ ज्ञानी हैं, प्रभु हम सबको वो ज्ञान दीजिए, मन की शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, और जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं उनको स्वास्थ्य लाभ कराइए। प्रभु जी आप ही देता है, आप ही करना है, और आप देखते हैं जो नेपाल में भी बड़ी तादाद में लोगों की हादसा हुई है, तो भगवान ही की क्रिया है, और हम भगवान के प्रति प्रार्थना ही कर सकते हैं। जो भी घर बीमार हैं, जिनके परिवार में दुख संकट है, प्रभु सबके घर में सुख शांति अमन चैन प्रदान करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चित् दुर्भाग भवेत। प्रभु जी सबके घर में अमन चैन लाए और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो महाउत्सव आज से शुरू होगा और शुक्रवार को खत्म होगा, हे कृष्ण कन्हैया आप तो गढ़गढ़ के वासी हैं, सभी के घर में अमन चैन आनंद लाइए। जय श्री कृष्ण।
0: जय श्री कृष्ण पंडित जी, और मेरे तरफ से सादर प्रणाम आपको, जो हमारे श्रोतागण की तरफ से भी नमस्कार आपको, और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी जहाँ भी कुछ भी कथा भी आती या प्रवचन वगैरह लोग रचे हैं अच्छी तरह से सफलतापूर्वक समाप्त हो और लोग ज्यादा तादाद में वहां उपस्थित हो। मिलते हैं जी।
2: जी हाँ, धन्यवाद परमा जी।
0: धन्यवाद पंडित जी। तो मित्रों ये थे पंडित सूरज चंद्र शर्मा जी, ये बतला रहे थे कि कहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम होगा हर मंदिर में और लोगों के घर पर कई लोग कर रहे हैं, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और जाएं परिवार को लेकर। चले आगे बढ़ते हैं मजेदार गीत के साथ, श्रेया घोषाल जी अपने साथियों के साथ इसे अदा कर रही हैं।

0: कि मित्रों, खूबसूरत सा गीत था, और चलें एक खबर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये खबर है,
1: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
3: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
0: जी मित्रों, 25 मिनट हुए हैं 8 बजकर, चले आगे बढ़ते हैं। चुंगलिया, ये गाना बगैर बजाए तो प्रोग्राम खत्म नहीं करना है।

जी मित्रों, गीत के साथ साथ 8:30 बजने वाले हैं। निविया जी तैयारी कर रही होंगी, आने वाली हैं, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ही आज का जो संगीत सरगम प्रोग्राम है यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार तक एंजॉय योरसेल्फ्स, मीट यू अगेन। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजवाणी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम

अब सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन, क्योंकि वीकेंड जो है वो आ गया है और हम लोगों की मस्ती जो है वो भी शुरू हो गया है। एटलीस्ट मेरी तो शुरू हो गया है, आई होप आपने भी अपनी मस्ती शुरू कर दी हो। क्योंकि सबसे पहले मस्ती जो सबसे पहला जो पड़ाव होता है ना, वो होता है अच्छा सा, अमेजिंग सा, यमी सा, टेस्टी सा कुछ खाना जो कि आपकी मम्मी के हाथ का आपको मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अगर आप खुद ही मम्मी हो तो फिर आपको अपने हाथ का खाना पड़ेगा। या आप बोलो कि बच्चों को कि अब आप हमें खिलाओ, क्योंकि वीकेंड आपके लिए भी स्पेशल होना चाहिए, राइट? सो आप अपने बच्चों के लिए बनाओ और बच्चों को फिर कहो आप भी हमारे लिए बनाओ। दैट्स हाउ इट शुड बी, राइट? सो सिर्फ मम्मीज ही यमी यमी यमी टेस्टी टेस्टी क्यों खिलाएंगी, हमें भी मम्मी को टेस्टी टेस्टी यमी यमी कुछ खिलाना चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ वी कैन स्टार्ट। जी हाँ, सो आइए खाने की बात हम कर लेते हैं। और इससे पहले मैं इस इमोशन में थोड़ा और आगे की तरफ बह जाऊं, वो मैं यहीं पर रोकूंगी इसको। और प्रोग्राम की शुरुआत होती है बढ़िया से गानों के साथ, लेकिन सिर्फ बढ़िया से गाने नहीं होते हैं, ट्रेंडिंग गाने होते हैं, क्योंकि ये इवनिंग वाइब से थोड़ा सा हटके है प्रोग्राम। मतलब चुनिंदा गाने, 10 चुनिंदा गाने, ट्रेंडिंग हॉट एंड हैपनिंग गाने, मतलब तीखी मिर्ची होती है ना उससे भी ज्यादा गर्म गाने हर किसी की जुबान पर होते हैं, रील्स इस पे बनती हैं, सोशल मीडिया पर बज बना हुआ है, म्यूजिकल स्ट्रीमिंग साइट्स को एकदम डोमिनेट करने वाले गाने लेकर हम आ गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लिस्ट की। और ये प्रोग्राम जो कि है टॉप 10 हॉट 10, इसका 10वें नंबर का गाना कौन सा है आपको बताते हैं। ये है राणा जी 2.0। आप लोग बोलोगे कि इन सबको 2.0 ही क्यों बनाना है, मतलब सीधा 1 एक, मतलब पहला गाना बनाइए, मतलब ओरिजिनल गाना बनाइए, सब कुछ मतलब पहले से जो बना हुआ उसी के साथ छेड़छाड़ करनी होती है। चलिए ये राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। जी हाँ, ये उसी वाले गाने का जो है वो रीमेक है। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बातें।

जी दोस्तों, तो मैंने कहा था ना, गाना बहुत ही फेमस है और उसी को रिक्रिएट किया गया है। मतलब रिक्रिएट कहना जरा गलत होगा, कहना होगा रिमिक्स किया है। मैं कहूंगी कि गाना मजेदार था। जी हाँ, मतलब रिमिक्स जो है वो मुझे नॉर्मली पसंद नहीं आते हैं, लेकिन इस गाने का रिमिक्स जो है वो बुरा नहीं था। लाइक यू कैन लिटरली वाइब ऑन इट। ऑल्दो मैं ये गाने को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, बहुत सारे गाने इस पे बहुत ज्यादा वाइब करते हैं और वो आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, इसके लिरिक्स बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब लगते हैं। आई थिंक दैट इज द रीजन। बट या, इट्स ऑल फन फॉर दैट मैटर। इट्स अ गुड सॉन्ग आई वुड से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या आपको भी ये गाना पसंद है या नहीं, प्लीज मुझे बताइएगा। और आपको ये रीमेक कितना पसंद आया वो भी बताइएगा। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। नौवें नंबर का गाना जो कि है रूप दी रानी। जी हाँ, रूप दी रानी, सुनते हैं इसको बिना देर किए, क्योंकि ये है नौवें नंबर का गाना इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का। और कहाँ आप ये मूवी देख सकते हो, आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट, क्योंकि गाना है पति पत्नी और वो दो का। लेट्स सी, पहले गाना सुनते हैं और फिर मूवी के बारे में बताते हैं।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं जिसमें कि आपको आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गाबी और राहुल प्रीत मिलने वाली हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स ट्यून इन करना है। नेटफ्लिक्स ऑन कीजिए और शुरू कर दीजिए, क्योंकि पति पत्नी और वो दो पिछले महीने से नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रही है। जी हाँ, मतलब पतली पत्नी और वो आपने देखी होगी, पति पत्नी और वो पार्ट टू आपने देखा होगा, लेकिन पति पत्नी और वो दो, मतलब पहले तो पति पत्नी और वो ही होता था, लेकिन अब पति पत्नी और वो दो हो गया है। क्या बात है, बंदे किस और जा रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ की स्क्रिप्ट्स भी किस और जा रही है, स्टोरीज भी किस और जा रही है, वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा। बट द थिंग इज कि इट्स अ फन मूवी, और अगर आप फनी तरीके से लेते हैं तो या इट्स अ गुड ह्यूमर मूवी, गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगेगी। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, और जो मूवी रिलीज हो गई है टॉक्सिक, थोड़ी सी टॉक्सिक गिरी कर ली जाए। जी हाँ, टॉक्सिक गिरी करने का वक्त आ गया, क्योंकि ये मूवी थिएटर्स में आ गई है, और अगर आपने नहीं देखी है तो गिव इट अ ट्राई, लेकिन पहले ट्रेलर देख लीजिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद आप मुझे ये मत बोलिएगा कि निव्या शर्मा क्या थी ये मूवी, मतलब कैसी मूवी थी। जी हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले ट्रेलर देखें, फिर डिसाइड करें कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। लेकिन आपको बता दूं फॉर द कॉन्टेक्स्ट कि ये यश की मूवी है, इसमें कृति सेनन है। जी हाँ, कृति सेनन नहीं है इसमें, बल्कि है ऑफकोर्स आई एम सो सॉरी, इसमें है कियारा आडवाणी। जी हाँ, इसमें है कियारा आडवाणी के साथ नयनतारा। जी हाँ, इसमें है तारा सुतारिया और भी बहुत सारी नायिकाएं, एक नायक और बहुत सारी नायिकाएं। लेकिन इसका ट्रेलर जो है वो काफी खतरनाक था, सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑफकोर्स इसका ट्रेलर देखकर ही जाए, और आप ये बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं मूवी, सो गो विद योर फ्रेंड्स और योर पार्टनर, दैट्स इट। ये मूवी हो चुकी है रिलीज।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और दोस्तों इसी के साथ अब आगे की ओर बढ़ने का वक्त आ गया है हमारे इस प्रोग्राम ने। हमने अपनी लिस्ट को शुरू कर दिया है। अब जाते हैं सीधा 7वें नंबर के गाने के ऊपर। और 7वें नंबर पर जो गाना है वो है आंखों से तूने 2.0। भाई तेरा स्टार है मूवी का। जी हाँ, और ये है राघव जुयाल की मूवी और इसमें आपको राघव और निहारिका दिखेंगे। अगेन इट्स अ 2.0 वर्जन, मतलब कि गाना पुराना है, बस इसको रिमिक्स या रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। कितना कामयाब होता है ये तो वक्त ही बताएगा। बताएंगे इसके लोग जो है वो राघव जुयाल और निहारिका की केमिस्ट्री को काफी पसंद कर रहे हैं। बट अगेन ओरिजिनल वर्जन इज ओरिजिनल एंड आई वुड ऑलवेज से, मैं हमेशा कहती हूं कि जो ओरिजिनल चीजें होती है ना उनको कुछ भी बीट नहीं कर सकता। नो मैटर आप कितना भी जो है वो चांद सितारे लगा दें उसके रिमिक्स वर्जन में, बट द ओजी वर्जन इज द ओजी वर्जन।

जी दोस्तों, और इसी के साथ वीकेंड है तो जरा बात कर ली जाए क्या क्या आप देख सकते हो अपने नजदीकी सिनेमा घरों में। जैसे मैंने कहा कि टॉक्सिक हो चुकी है रिलीज, तो आप टॉक्सिक देख सकते हो, बट अगेन आप उनको अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते हो। इधर यू कैन वॉच इट विद योर पार्टनर और योर फ्रेंड्स, आई थिंक दैट इज इट। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और एक और मूवी जो है आवारापन 2, ये है आवारापन का सीक्वल। और कहां से स्टोरी शुरू हो रही है, क्या पिछली स्टोरी का कुछ लेना

जो गाने इतने पुराने हैं, जिन्होंने पहले ही लोगों के दिलों को रूल किया है, वो अभी भी फिर से वही कर रहे हैं। मतलब उनको नए गाने बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, दो गाने उन्होंने सेम आवारापन मूवी के ही ले लिए हैं। आप खुद ही सोचिए कि मोहित सूरी इतनी जबरदस्त सक्सेस की स्प्री पर चल रहे हैं कि उन्होंने अभी अभी थोड़े दिन पहले ही एक बड़ी ही जबरदस्त सी गाड़ी अपनी कार कलेक्शन में शामिल की है। ऑफकोर्स सैयारा की बात कर ले, आवारापन टू की बात कर ले, मतलब अच्छी अच्छी मूवीज देंगे तो कैसे नहीं होगा, राइट। इसी के साथ यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं और एक और मूवी है बटवारा, जो की है 1947 और ये है सनी देओल प्रीति जिंटा की मूवी। अगेन इसमें भी शबाना आजमी आपको मिलेंगी और ये वही मूवी है जिसमें कि ये बंटवारा यानी कि पार्टीशन से रिलेटेड कुछ चीजें आपको नजर आएगी, उसी से रिलेटेड स्टोरी आपको नजर आएगी। लेकिन इस बार सनी देओल जो है उन्होंने साइड जो है वो चेंज कर ली है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं वो आपको तब पता चल जाएगा जब आप इस मूवी को देखेंगे। जी हाँ, तो ये कुछ हिंदी मूवी और इंडियन मूवीज हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा कौन सी हॉलीवुड मूवीज है जो कि आप देख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप एक और गाना सुनिए जो कि तबाही जैसी मूवी गई है, मतलब तबाही आपने पहले सुना जो कि टॉक्सिक का था। एक और गाना है टॉक्सिक का जो कि इस लिस्ट में है और उसका नाम है मदहोश।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, और जैसे मैं आपको बता रही थी कि अपने नजदीकी सिनेमा घरों में अगर आप मूवी देखने का प्लान कर रहे हो तो कौन कौन सी मूवीज लगी हुई है, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। जैसे मैंने आपको इंडियन मूवीज के बारे में बता दिया है, अब जरा चलते हैं हॉलीवुड मूवीज की तरफ, क्योंकि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लगा हुआ है। जैसे मैंने कहा, द ओडिसी पिछले 4 हफ्तों से लगी हुई है, 4 से 5 हफ्तों से, और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और उसमें ओडिसियस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मैट डेमन। इट्स अ स्टोरी अबाउट अ ग्रीक हीरो जो कि ट्रोजन वॉर के बाद जो है वो अपने घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो घर जाने की जर्नी जो है वो 10 साल लंबी हो जाती है, और उसी पर ये कहानी बेस्ड है। जी हाँ, इसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स आपको नजर आएंगे। जैसे मैंने कहा था, मैट डेमन के साथ आपको इसमें टॉम हॉलैंड भी नजर आएंगे, एन हाथवे आपको नजर आएंगी, चार्लीज थ्रोन आपको इसमें नजर आएगी, जेंडेया आपको इसमें नजर आएंगी, लुपिटा नियांग इसमें आपको नजर आएंगे, साथ में नजर आएंगे रॉबर्ट पैटिंसन, दैट टू इन अ विलेनियस कैरेक्टर। जी हाँ, इसी के साथ द ब्रांड न्यू डे यानी कि स्पाइडरमैन तो आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हो। गो टेक योर किड्स एंड वॉच द मूवी अगर आपने अभी भी नहीं देखी है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपने अभी तक देख ली होगी। लेकिन अगर आपने अभी भी नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, द मूवी इज स्टिल गोइंग वेरी वेरी वेरी स्ट्रांग। सो या, गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। इसी के साथ एक और मूवी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट। जी हाँ, द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट एक मूवी है जिसमें कि एक मोहल्ला है, जी हाँ एक टाउन है, जो कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी है, और एक दिन वो लोग उठते हैं जब सुबह और वो देखते हैं कि उनका जो मोहल्ला है यानी कि उनका जो टाउन है वो डायनासोर एरा में पहुंच गया है। अब उनको नहीं पता है कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन उन्हें उस जिंदगी को नेविगेट करना है, पहले डायनासोर से बचना है, क्योंकि हम में से किसी को भी डायनासोर के बीच में रहने की आदत नहीं है। सो ऐसे में वो भी ऐसा देख रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे ये किया जा सकता है, कैसे बचा जाए, कैसे जिंदा रहा जाए, इस पर ये मूवी बेस्ड है। सो ऑफकोर्स आपको इसमें डायनासोर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक मूवी है पॉ पेट्रोल द डायनो मूवी, जो कि आप देख सकते हैं। अगेन ये जो डायनो मूवी है ये भी इसमें आपको डायनासोर नजर आएगा, प्लस इसमें आपको बच्चों को ले जाने की इजाजत भी मिल जाएगी, क्योंकि यू कैन लिटरली टेक योर किड्स आउट। इट्स अ एनिमेटेड कॉमेडी मूवी जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपके बच्चों को भी बहुत अच्छी लगने वाली है। इसी के साथ अगर आपको हॉरर जॉनर बहुत पसंद है, देन इंसीडियस का एक और पार्ट आ गया है, गो फॉर इट एंड लेट मी नो। पर डरिएगा मत, पहले ट्रेलर देखिएगा फिर ही जाइएगा, नहीं तो बाद में आप पता चला बोल रहे हो मुझे कि ये क्या है निविया शर्मा, इतना ज्यादा क्यों, इसमें डरावनी चीजें हैं। वेल ऑफ कोर्स वो डरावनी मूवी है तो उसमें डरावनी चीजें होंगी। सो इफ हॉरर इज योर जॉनर देन ओनली गो फॉर इट। इसी के साथ यहां पर अगली मूवी जो है, मतलब अगला गाना जो है वो है कॉकटेल 2 का, गाने का नाम है जब तलक आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों अब जरा आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको बताने वाली हूँ आप कौन कौन सी चीजें अपने नजदीकी सिनेमाघरों में देख सकते हैं, तो अब जरा बात हो जाए उन चीजों की जो कि आप देख सकते हो अपने घर पे OTT पे काउच के कंफर्ट के साथ। जी हाँ, सो मस्कारा यानी कि मैं वापस आऊंगा इज ऑन नेटफ्लिक्स। जी हाँ, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये मूवी बहुत ही खास है, इसका गाना जितना हिट हुआ है ये मूवी भी उतनी ही ज्यादा प्यारी है। लव स्टोरी है और लव स्टोरी है उस वक्त की जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। जी हाँ, और उस वक्त उस लव स्टोरी का क्या एंडिंग हुई इसी के बारे में है। वेल, जितने भी लोगों ने ये मूवी देखी है वो एक ही चीज कहते हैं कि ये मूवी आपको इतना इमोशनल फील करवा देगी, इतना इमोशन फील करवा देगी कि आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कहीं आप भी उसी एरा में तो नहीं हो। जी हाँ, वो एरा बहुत बुरी थी। जी हाँ, सो इसमें आपको दिलजीत दोसांझ मिलेंगे, साथ में मिलेंगे वेदांग रैना और साथ में मिलेंगी शर्वरी बाग। जी हाँ, शर्वरी बाग और वेदांग रैना के साथ इसमें आपको नसीरुद्दीन शाह भी मिलने वाले हैं। सो देखिए जरूर और मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा इस मूवी में, क्या पूरी ही मूवी अच्छी लगी या कोई स्पेशल एलिमेंट था जो आपको बहुत ही अच्छा लगा। सुनते हैं ये गाना जो कि है मस्कारा।

जी हाँ दोस्तों, सो मस्कारा तो है बहुत ही प्यारा, और अगर आपकी कोई महिला मित्र है, अगर आपकी पार्टनर है, तो उनको मस्कारा गिफ्ट कीजिए, उनकी आईलैशेस को और खूबसूरत बनाइए, और फिर लिटरली वो उन आईलैशेस के थ्रू आप ही को देखने वाली है. सो मतलब बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे वो आप ही के काम आएगा. सो मस्कारा अपनी लेडीज को जरूर दीजिए, और इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं. जी हाँ, सो एक और चीज के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ दोस्तों, और वो क्या है. वेल, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको ये बताया था कि कैसे कनाडा जो है उसके एक प्रीमियर है ओंटेरियो के, वहां पर वो कह रहे थे यूएस को कि हम लिटरली आपका जो है वो बिजली बंद कर देंगे. जो हमने सुना है, मतलब कहीं ना कहीं ये बात जो है और ये कहावत जो है वो कही जाती है कि धंधा पानी बंद कर देंगे. वेल, वही वाली सिचुएशन जो है यहां पर हो रही है. मतलब एक तरफ से कंट्री जो है वो टैरिफ लगा रही है, दूसरी तरफ से जो दूसरी कंट्री है वो कह रही है कि हम तुमको कैंडल लाइट डिनर करने पर मजबूर कर देंगे अगर तुम नहीं सुधरे. जी हाँ, सो मैं यही सोच रही थी कि सच में अगर कनाडा जो है वो यूएस का धंधा पानी तो नहीं बंद कर सकता, बट अगर वो बिजली बंद कर दे तो क्या होगा. क्या वो बिजली कहीं और से ला सकता है यूएस? वेल ऑफकोर्स, लेकिन क्या उसको एफर्ट्स लगेंगे उसके लिए? बहुत ज्यादा. लेकिन ये चीज हो क्यों रही है? एक और चीज है जो कि बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि अमेरिका इस वॉर को बंद नहीं करना चाहता है. उसके पीछे रीजन ये है कि वो अपना ऑयल जो है वो दूसरी कंट्रीज को बेचना चाहता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अगर खुला रहेगा तो वो अपना ऑयल जो है जो कि वेनेजुएला से वो लाता है, वो उसको वो किसी को नहीं दे पाएगा. सो या दैट इज द थिंग, बट लेट्स सी क्या होता है. बट अगेन, अभी तक हमने कनाडा को किसी को भी ऐसी धमकी देते हुए नहीं सुना था, लेकिन इस बार धमकी दी गई, और वो भी खतरनाक, कि हम तुम्हारी बिजली ही बंद कर देंगे. क्या बात है. जी ऐसे के साथ यहां पर आगे की ओर बढ़ते हैं. एक और गाना मैं आपको सुना रही हूं, और वो है मैसेकर फ्रॉम द मूवी अल्फा

0: रीवॉश पीरियड्स में इचिंग।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों एक सवाल है आपसे, क्या आप उसका आंसर दोगे मुझे? जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा हाँ हाँ पूछो पूछो, ऑल दो हम किसी सवाल का आंसर देना पसंद नहीं करते हैं वीकेंड पे, पर चलो ठीक है तुम कह ही रही हो तो पूछ लो। जी हाँ, सो इफ आई स्टेप ऑन अ कॉर्नफ्लेक व्हाट डज दैट मेक मी? जी हाँ, अगर मैं किसी कॉर्नफ्लेक पर पैर रख देती हूँ तो मैं क्या बन जाऊंगी? गेस कीजिए। हाँ, थोड़ा तो कीजिए। चलिए ठीक है, मैं ही बता देती हूं। इफ आई स्टेप ऑन अ कॉर्नफ्लेक देन आई विल बिकम अ सीरियल किलर। मतलब यार सीरियल ही तो बनता है ना, कॉर्नफ्लेक से क्या बनता है, सीरियल बनता है। तो अगर मैं कॉर्नफ्लेक पे पैर रख दूंगी तो आई विल बिकम अ सीरियल किलर। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा कहां से लाई हो तुम ये पीजे? नहीं, इट्स नॉट अ पीजे, इट्स अ खतरनाक खतरनाक जैजी वाला जोक। जी ऐसे के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, और जो दूसरे नंबर का गाना है वो आपको सुनाने का वक्त हो गया है, वो है माशूका फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2, जो कि अगेन नेटफ्लिक्स पे लगी हुई है, आप उसे देख सकते हो।

इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ, जा रहे हैं हम, मिलेंगे अब आपसे इवनिंग वाइब में मंडे को। तब तक के लिए आपको क्या करना है? वेल ऑफ कोर्स फन करना है, वीकेंड को एंजॉय करना है, गपशप करनी है, अच्छे से अपने नियर एंड डियर वंस के साथ वक्त बिताना है। दैट्स अबाउट इट। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। नंबर 1 सॉन्ग है इस हफ्ते का तेरा मेरा रिश्ता फ्रॉम द मूवी आवारापन 2।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ? लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
6: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
5: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
6: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
7: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
8: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
7: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
8: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
7: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
8: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
9: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
10: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
11: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
12: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
13: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: सासों की माला पे समरू में।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।